ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम ना खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया ना करो और अल्लाह किसी इतराने और शेखी भगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामनो दिल और जबी, लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: I love FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत को मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखने और ढांचा जाति इकदामात आगे बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और किर्गिज़िस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने न्यूयॉर्क में मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान से ड्रोन्स के जरिए मुल्क की हदूद में दानिस्ता और गैर कानूनी दरअंदाजी की शदीद मसम्मत की है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: sonra tebe.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: This is FM 101.1।
2: सेहत की बात साई लाइफ के साथ। वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल लाहौर। जुमा 25 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की।

संभल के आ रहा तू नजरें मिलाना जालिम दुनिया लोग लेते लूट ना जाना कहीं दूर प्यार दी गल्ला

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल लाहौर। जुमा 25 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: एक ऐसे दारुल अमान, शेल्टर हाउस, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जहाँ उन्हें प्रोटेक्शन हो। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस की सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, ना सिर्फ अकलियती बरादरी की खवातीन के लिए बल्कि बाकी सब खवातीन के लिए, क्योंकि हमने पिछले ही दिनों में इस तरह की रिपोर्ट्स आती रही हैं पाकिस्तान में, जिसके लिए नेशनल कमीशन ने एक्शन भी लिया है कि पुलिस लेवल पे, थानों के लेवल पे खवातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती हैं। दूसरी बात है, स्पेसिफिकली अगर अकलियती बरादरी का देखा जाए तो इनके CNIC के हसूल में, निकाह रजिस्ट्रेशन के हसूल में भी इनको बहुत से बैरियर्स का सामना है, ख़ासतौर पर वो खवातीन जो कि पेरिफ्रल के एरिया में रह रही हैं, रूरल एरिया में रह रही हैं। जिस तरह हम लोग शरई शादी कर लेते हैं, इस तरह इन लोगों की भी अपने पंडित के साथ या पादरी के साथ सामने ओथ के ऊपर शादियाँ होती हैं, जिनका इंदराज उस तरह से हो नहीं पाता है। उसके बाद जब ये अपने हकूक़ के लिए जाना चाहती हैं कहीं, तो इनके पास वो फोरम नहीं होता, वो प्लेटफॉर्म नहीं होता जिस पे अपने ये इनहेरिटेंस राइट्स क्लेम कर सकें या अपने और हकूक के लिए क्लेम कर सकें। तो ये सब बैरियर्स हैं जो इनको फेस करने पड़ते हैं।
1: और तो इसीलिए क्या नज़र आता है नेशनल कमीशन के लेवल पर कि कैसे ये बैरियर्स के लिए कुछ क्या कानून साजी हो सकती है या कोई पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, क्या हो सकता है?
0: जी, जिस तरह ये गिलानी साहब की जजमेंट भी है तो उसमें बड़ी अच्छी जजमेंट है, अगर हम उस पर भी अमल करें, इनकी इनका माइनॉरिटीज़ का कमीशन फाल होके काम करे और इनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, रोज़गार में, हर चीज़ में इनको अपना पूरा कोटा दिया जाए और उसके बाद इनके लिए अलग जस्टिस के लिए अलग
1: फायदा दिया जाए।
0: जी,
1: तो कोटा किस तरह दिया जा सकता है? लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो कोटा किस तरह दिया जाएगा?
0: हमें अपने कैरिकुलम में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: क्योंकि हमें बचपन से सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि ये आपके बहन भाई हैं जो आपके साथ एक मुल्क में रहते हैं और आपके माशरे में सुकून के लिए, अमन के लिए ज़रूरी है कि आप सबको मिलजुल के रहना है। हमें अपने मजहबी रहनुमाओं को बताएं कि हमने आपस में अमन और भाईचारे से रहना है। जब वो ये बात प्रीच करेंगे, आगे इसकी बात फैलाएंगे, तो लोग उनकी बात सुनते हैं, मजहबी लीडर्स की। तो उनको भी इस तरह से अवेयरनेस रेजिंग करने की ज़रूरत है। तो उस तरह से ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हालात हमारे।
1: बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि हकूमती इदारे, सिविल सोसाइटी, मीडिया और कम्युनिटी रहनुमा अकलियती खवातीन और लड़कियों के तहफ़ और शराकत को यकीनी बनाने के लिए और बाख्तियार बनाने के लिए क्या क्या इकदाम आपको सिविल सोसाइटी में होते हैं? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन है वो ना सिर्फ हकूमत पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है बल्कि उसका एक मैंडेट ये भी है कि जो सिविल सोसाइटी के जो इदारे हैं उनके साथ एक रब्त रखे और उस रब्त के तहत सिविल सोसाइटी को भी गाइड कर सके कि किस चीज़ के बारे में सिविल सोसाइटी ने, क्योंकि जाहिर है जब हम कोई कानून साजी करते हैं, जैसे आपने खुद भी फरमाया कि दो तीन लेवल्स होते हैं ना, एक तो सरकार ने पॉलिसी बना देनी है लेकिन उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी ट्रेनिंग्स के लिए, उसकी चीज़ों के लिए सिविल सोसाइटी को और मीडिया को एक किरदार अदा करना पड़ता है। तो किस तरह से नेशनल कमीशन जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ इंगेज कर रहा है विद द मीडिया कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करें?
0: सिविल सोसाइटी के साथ राबता रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम अपनी बातें, अपनी पॉलिसीज़ को फैला सकते हैं, हम अवेयरनेस रेजिंग कर सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं कि आपके क्या हकूक हैं। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ने मीडिया की ट्रेनिंग्स की हैं, मीडिया फेलोशिप प्रोग्राम्स किए हैं। ये एक दफ़ा पहले भी हुए थे 2023 में, 24 में, इस साल हमने 2025 में दोबारा से तसलसल कायम रखा है उसको, और हमने 3 मीडिया ट्रेनिंग्स की हैं जिसमें हमने जर्नलिस्ट को बुला के उनकी ट्रेनिंग्स की हैं कि कैसे आपने वुमेन की इक्वलिटी के लिए और चाइल्ड राइट्स पे काम करना है और वुमेन राइट्स पे काम करना है ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसमें इन्होंने उन्हें ये भी समझाया गया कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जिसमें अकलियती ख़वातीन भी आ जाती हैं और डिसेबल वुमेन भी आ जाती हैं, उनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना है, उनके लिए कैसे आपने अवेयरनेस रेजिंग करनी है और कैसे आपने उनके लिए एडुकेसी करनी है। तो इस सिलसिले में हमारी 3 ट्रेनिंग फेलोशिप प्रोग्राम्स हुए हैं, कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। तो ये एक अच्छा सिलसिला था और इस तरह का सिलसिला मैं कहती हूँ कि जारी रहना चाहिए, ताकि एक तो हमारा सिविल सोसाइटी से रابطہ भी मजबूत होता है और सहाफ़ियों के थ्रू हमारी आउटरीच बढ़ जाती है, हमारी आवाज़ बढ़ जाती है और दूर तक पहुंचती है। इसी तरह हमारी नेशनल लॉबिंग डेलीगेशंस के साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, जिनके साथ हम मिल के अकलियती ख़वातीन के साथ और मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए काम करते हैं, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ कौन सी पॉलिसी में कौन सा गैप आ रहा है, अकलियती ख़वातीन के लिए कहाँ गैप्स आ रही हैं और हम

0: FM 101.
1: It's Kaz on the beat.

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی ہے.

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने अमन तरक्की के लिए मस्नूई ज़हानत की मसावी रसाई बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर पेट्रोलियम ने मुल्क में ईंधन की बिला तआत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेशगी इंतजाम करने की हिदायत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। और अब खबर।

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: आप सुन रहे हैं FM 101। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया ट्विटर एंड इंस्टाग्राम FM 101 PBC। फॉलो अस ऑन फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान FM 101 हिट्स FM।
1: दिस इज FM 101।
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने अमन व तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत की मसावी रसाई बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ तमाम मानदाना सरगर्मियाँ फौरी तौर पर बंद करे और बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमारी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला'आत की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं।
1: Hi, this is FM 101.
2: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: आप सुन रहे हैं FM 101। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम FM 101 PBC। फॉलो अस ऑन फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान। FM 101 हिट्स FM।
1: दिस इज FM 101।
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.

0: सेहत की बात साई लाइफ के साथ। वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल लाहौर। जुमा 25 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
1: Tune in to One Above FM 101.
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: This is FM 101.
4: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हजूर गौसर आज़म पीरान पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला के बारे में बयान करेंगे। हजूर गौस पाक 5वीं सदी हिजरी के आखिरी चौथाई में तब्रिस्तान के इलाके जिलान या गिलान में पैदा हुए और ये 471 हिजरी है। आपके ददियाल ननियाल दोनों सादात से हैं, नजीब उतरफैन हैं और मौलाए कायनात शेर खुदा से जाकर रब्ता मिलता है। अभी आप मासूम ही थे, वालिद ग्रामी का विसाल हो गया और फिर माँ ने सारी खिदमात अंजाम दी, तालीम थी, तरबियत, तमाम परविश, और ख़ुद भी कुरान मजीद आपको पढ़ाया और हिफ्ज कराया और फिर तरबियत करके फिर बगदाद शरीफ भेजा। हाँ, उस वक़्त सारे उलूम हासिल किए, सिर्फ सरफ़ व नहू, तफ़सीर, हदीस, फ़िक्का, फ़लसफ़ा, मंतक, इलम कलाम, दस्तरस हासिल की और 18 बरस की उम्र में मुमताज़ उलमा में आपका शुमार होने लगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तहसबू अन्ना अक्सर हूँ यस्माउना व याकिलून इन हम इल्ला कला नाम बल हम अदल्लु सबीला। ये कुरान मजीद का तर्जमा है कि ये समझते हो कि इनमें बहुत कुछ सुनते हैं या समझते हैं, वो तो नहीं मगर जैसे चुपाए, बल्कि उनसे भी बदतर गुमराह जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को भी नहीं जानते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग नहीं जानते थे उनके मुकाम को उनकी, तो वो उनको कुरान मजीद ने ना जानवर कहा है कि इनके ना इनके यस्मऊ ना वो सुनते हैं और याकुल ना वो समझते हैं। हाँ ताजु, तो क्या आप समझते हैं कि सुनते हैं समझते हैं? नहीं। इसी तरह आज भी जो लोग अंधे हैं आँखों से, जो लोग दिमाग नहीं रखते, ना कान है ना आँख है, जिसे कुरान मजीद में हलाक कहा है, काफर को हलाक कहा है, और मुसलमान को जिस ईमान ले आता है वो जिंदा कहा है अल्लाह ताला कुरान मजीद में। तो ये वो लोग जो ख़त्म अल्लाह कुलूब वाला समय वाला अफसारिम, जब ख़त्म हो जाते हैं ना, इनके मोहर लग जाती है इनके दिलों पे, तो फिर ये फिर ना इन्हें नज़र आता है, देखकर भी नहीं हजूर पाक को देख रहे होते थे लोग, सुनकर भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुन रहे होते थे, जैसे कुछ सुना ही नहीं। ऐसे ही आज भी हजूर गौसल आज़म पीरान पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला को देखने के लिए वो आँखें चाहिए जो अल्लाह की तरफ से अता हों, वो कान चाहिए उनको सुनने के लिए, वो दिमाग और दिल चाहिए जो अल्लाह का दिया हो, और वो अल्लाह हर एक को नहीं देता, वो उन्हीं को देता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है, उन्हीं को समझ अता करता है, जो सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम दुआ करते हैं 5 वक्त नमाजों में कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों का साथ अता फरमा जिस पर तेरे इनामात रहे। ये हैं वो औलिया अल्लाह जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना इनाम नाजिल फरमाया। तो इसी तरह से हदीस कुर्सी के मुबारक अल्फाज के मुताबिक इनके मकाम बंदगी को ऐसे कुर्ब हक की सूरत अता होती है कि इनके औसाफ अखलाक किरदार ऐन कुव्वत हक बन जाते हैं। जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौज नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है दिल के सीनों में। अल्लामा इकबाल शाह फरमाते हैं, ना पूछ इन खरका पुरुषों की अरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आसीनों में। ये हैं गौसल आजम हजरत मीर मीरा मोहियुद्दीन शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी। हजूर गौस पाक रहमुल्ला 5वीं सदी हिजरी के, यानी आपका इतना 5वीं सदी हिजरी आपके दम कदम से रोशन हो गई। हाँ, कुरान मजीद में इरशाद मुबारक है, वमिन नासे मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, यानी लोगों में कोई वो भी होता है کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسند کی جستجو میں اسی کے تصرف میں دے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی کریم اور بڑا ہی شفیق ہے. علم و حکمت کے شہر بغداد کے اسی سفر میں وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا جو ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھایا کہ سچ بول کے والدہ کا کہنا مانا اور سچ بولا. اور اسی طرح بہت سارے موقعوں پہ غوث پاک نے بہت تھوڑے سے عرصہ میں علوم اس طرح سے پوری دنیا میں جہاں یہ بھی آپ کو شرف حاصل تھا کہ جب آپ واعظ فرماتے تھے ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں لوگ ہوتے تھے جو واعظ سن رہے ہوتے تھے. جس طرح سے پہلی لین والا بندہ آواز سن رہا ہے ایسے ہی آخری لین والے تک بھی آواز جا رہی ہوتی تھی. آپ حضرت شیخ ابو سعید مبارک نے کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, ان سے خرقہ بھی ملا آپ کو. اور پھر یہ کیفیت ہوئی کہ زبان حق شناس سے قرآن حدیث کے علوم باطنی تربیت اخلاق کی اصلاح اور دین مقبول کے ہماگیر خدمات کے ایسے چشمے پھوٹے کہ عالم ان سے سیراب ہوا. اور آج تک ہاں حضور پاک کی زندگی سراپا کرامت تھی. اور سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو بھی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اپنی سابقہ زندگی سے سچی توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چل پڑتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین صدق اللہ علیہ.
6: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپ اس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
4: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
1: Tune in to One Above FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल लाहौर। जुमा 25 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म और जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा ने न्यूयॉर्क में मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से चलाए गए ड्रोन्स के जरिए अपनी हदूद में दानिस्ता और गैर कानूनी दरअंदाजी की शदीद मजम्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। उन्होंने ये बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मस्नूई जहानत, ऑटोमोबाइल्स, तवानाई, तामीरात और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के वफूद से न्यूयॉर्क में मुलाकातों के दौरान कही।
1: Hi, this is FM 101.
2: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: आप सुन रहे हैं FM 101। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम FM 101 PBC। फॉलो अस ऑन फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान। FM 101 हिट्स FM।
1: दिस इज FM 101।
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू हैं।
4: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल लाहौर। जुमा 25 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.
3: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
4: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा,

back after this short commercial break. Stay with us.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
3: Safar-e-Hajj, ek muqaddas safar. और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सफर-ए-हज, एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सफर हज, एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सफर हज, एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
1: And then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: आप सुन रहे हैं FM 101। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया ट्विटर एंड इंस्टाग्राम FM 101 PBC। फॉलो अस ऑन फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान FM 101 हिट्स FM।
1: दिस इज FM 101।
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: I love FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसे मंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू हैं।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू हैं।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू हैं।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू हैं।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

be back after this short commercial break. Stay with us.

home delivery, dial 111 77 99 77. Simply Sufi Express.

0: प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज़ायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: आप सुन रहे हैं FM 101. फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया ट्विटर एंड इंस्टाग्राम FM 101 PBC. फॉलो अस ऑन फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान FM 101 हिट्स FM.
1: दिस इज FM 101.
0: कराची लाहौर इस्लामाबाद पिशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लारकाना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Safar-e-Hajj, ek muqaddas safar. Aur is safar mein ek bharosemand munazzam zaruri hai. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज़्ज़मीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार शराइत और ज़वाबित लागू हैं
5: सुनते रहिए FM 101.
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए HBL इस्लामिक सफर हज में आपका खिदमत गुजार शराइत और ज़वाबित लागू हैं

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है। सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
1: सुनते रहिए FM 101.
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
1: सुनते रहिए FM 101.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.

मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। खलीज ताउन काउंसिल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की है। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का पांचवां दौर कोपनहेगन में हुआ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों को ज़मीनी हकायक बेनकाब करने पर रियासती ज़ुल्म व तशद्दुद का सामना है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है।
1: जो काफ़ी जारी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल रहा है।
2: मक्का मुआहदे के बाद से एतमाद में लिया सर ईरान के सदर को, जी उनसे बात हुई आपकी?
1: ये किसी के खिलाफ नहीं।
3: सर इतना कामयाब दौरा आसी तबराही में जा रहा है और पाकिस्तान की हर जगह तारीफ हो रही है और अमेरिका ईरान की मीटिंग हो गई है, सुनने में आ रहा है कि शायद एक और मुलाकात हो जाए, क्या कहेंगे? हर जगह पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है सीएन के अहम इजलास में।
1: एक अल्लाह ताला के करम है कि एक बामी मुशावरत और बामी जो काविशें हैं पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में जो काफ़िशें जारी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल रहा है।
2: मक्का मुआहदे के बाद से एतमाद में लिया सर ईरान के सदर को, जी उनसे बात हुई आपकी?
1: ये कि किसी के खिलाफ नहीं।
3: सर इतना कामयाब दौरा आसी तबराही में जा रहा है और पाकिस्तान की हर जगह तारीफ हो रही है और अमेरिका ईरान की मीटिंग हो गई है, सुनने में आ रहा है कि शायद एक और मुलाकात हो जाए, क्या कहेंगे? हर जगह पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है सीएन के अहम इजलास में।
1: एक अल्लाह ताला के करम है कि एक बामी मुशावरत और बामी जो काविशें हैं पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में जो काफ़िशें जारी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल रहा है।
2: मक्का मुआहदे के बाद से एतमाद में लिया सर ईरान के सदर को, जी उनसे बात हुई आपकी?
1: ये किसी के खिलाफ नहीं।
4: Up next, RJ Talk on your radio dial. Keep it locked.
5: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

तोरे नजर ना आवे, जो दिल तेरे इश्क ने कीता मेरे सोनिया मस्त। रुत बसंती अंदर माही जलवा आण दिखाया, बुलबुल नहर हवावा फुल भी हो गए मस्त। रोज अवल में जाम जे पीता वहदत मस्ती वाला, बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिसदे मस्त। ओ ना डरदा दोजख कोलों, ना लालच जन्नत दा रखे,

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। बाहर वक्त हो चुका है 11:01:24 का सन है। मैं हूँ आरजे डॉक्स, प्रोग्राम है नाइट लाइन। हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाते हैं और ना जाने क्या क्या आप और मैं करते रहते हैं। बाद अवकात मैं भी गैर संजीदा बातें करता हूँ, आप भी करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं और दोस्तों में बैठते हैं, कह के लगाएंगे, कभी आंसू बहाएंगे, कभी कोई और बात, कभी कोई और किस्सा, लेकिन सब का सब लफ्जों का मोहताज है। कभी आपने सोचा है लफ्ज कहाँ से आते हैं? कभी आपने सोचा है लफ्जों की हाजत क्यों है? कभी आपने सोचा है अगर आप बोल ही ना पाते, जबान ना होती आपके पास, तो आप क्या करते, क्या जिंदगी होती, किस तरह की होती? बड़े मजेदार सवाल है। इस तरह के सवाल अपने साथ करे इंसान, अपने आप से करे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें खुलती हैं जो आप आम दिनों में नहीं सोचते, जिनके बारे में आपको ख्याल भी नहीं गुजरता। जब आप सोचने लगे, मैं सोचता हूँ कि अगर जबान ना होती तो क्या होता, मैं शायद उसी से हम कलाम होता, इशारों से, कनायों से, निगाहों से, अपने जेस्चर से, जो महज सिर्फ मेरे सामने होता और जो मेरे पीछे से आता या मेरे दाएं या बाएं से आता, उससे मैं कैसे गुफ्तगू करता या वो क्या समझता कि क्या कहता है, क्या चाहता है? वो जो मेरी निगाहों में देखता, सिर्फ वो ही मुझसे गुफ्तगू कर पाता। मेरे सामने बैठा शख्स जिसका मुंह नीचे होता, वो भी मेरी जबान को ना समझ पाता। लफ्ज बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, नेमत आला है। और आसन तकवीम के दर्जा पे खल्क किया उसने तो वो यही है कि हर तरह से मुकम्मल बनाया। लेकिन हम सोचें तो सही क्या है। आपने इजहार मोहब्बत करना है, आपको लफ्ज चाहिए। इजहार नफरत करना है, लफ्ज चाहिए। किसी को साथ लेकर चलना है, लफ्ज चाहिए। किसी से दामन छुड़ाना है, लफ्ज चाहिए। कहीं पर रोना है, इजहार करना है, गम सुनाना है, लफ्ज चाहिए। कहीं पर कह के लगाने हैं, आपको लफ्ज चाहिए। किसी से कुछ पूछना है या कुछ बताना है, लफ्ज चाहिए आपको। आते कहाँ से और क्यों आते हैं? जीपीटी ने कहा अभी, जीपीटी ने क्या कहा तुम्हें बिलाल?
1: सर, जीपीटी ने ये मानी बताया है लफ्ज़ का, किसी लफ्ज़, जुमले या बात से जो मतलब, मफहूम या मुराद समझ में आए, इसे लफ्ज़ कहते हैं।
0: कोई मफहूम समझ आए। अब मफहूम की तारीफ क्या है? लफ्ज़ वो जो बामानी हो, अब मानी क्या है? This is the question. बताएं।
2: जो अपने अंदर कुछ समाये हुए हो, कुछ
0: एक्सप्रेशंस, हाय पहुंच रहे हो कहीं ना कहीं करीब तरीन।
2: बड़ी मुश्किल, बड़ी देर की रियासत के बाद जो है ना यहाँ तक पहुंचा हूँ।
0: बात कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो,
2: अपने अंदर कुछ समाये हुए।
0: बहुत अच्छी बात है।
2: सामने वाला जो समझता है वो समझता है, ये एक अच्छी डेफिनेशन।
0: बहुत अच्छी बात
1: सर, आपका क्या?
0: कहीं ना कहीं करीब करीब पहुंच रहे हैं, अपने ख्याल आप मुझे बता सकते हैं और बताएं ना। आप और मैं, हमारे दरमियान जंग ही लफ्जों की है। मैंने तुम्हें ये कहा, तुमने ये समझा, जबकि मेरा मकसद ये नहीं था। मैं कुछ और कहना चाहता था।
1: फिर ये तो चुनाव हो गया ना लफ्जों का, कि हमने अगर
2: इसके पीछे एक्सप्रेशंस भी तो है ना।
1: चुनाव दुरुस्त,
0: मैंने जिन लफ्जों पे जोर दिया आपने उनको नहीं समझा।
2: कहना चाहता था, तुमने ये समझा, ये
0: आप भी बता सकते हैं और इसके अलावा कोई भी बात करना चाहे कर सकते हैं, मुझे कॉल करें और थोड़ा सा गाइड करें। आपसे सीखना चाहेंगे, बताइए आप क्या समझते हैं लफ्ज़ के बारे में। 04221001011। बड़े अरसे के बाद मैंने फलसफाना सा एक मौजू रख दिया, अदरवाइज मैं अवॉइड ही करता हूँ, ना रखूँ। اور خاص طور پہ آج کے دن تو میں بالکل کوشش کرتا ہوں فلسفہ نہ
1: کروں
0: لیکن آج چھڑ گئی ہے
2: تو آج چھڑ گئی ہے
0: دیکھی جائے گی آج پھر فلسفہ نہ ہی
1: ہم بھی پھنس گئے ہیں سر
0: آج اسی پہ بات کریں گے تو آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی ہے زبان آپ کی کوئی بھی ہے اردو ہے پنجابی ہے انگریزی ہے سرائکی ہے پشتو ہے یا کوئی اور زبان بولتے ہیں جو زبان بھی آپ بولتے ہیں لفظ تو ہیں
2: exactly. محتاج ہے ہر زبان جو ہے وہ لفظوں کی محتاج ہے
0: آپ کسی کے ساتھ پسند کا اظہار کریں یا اظہار برت کریں یا نفرت کریں لفظ مختلف ہیں ہنٹ تو دے ہی دیا چلے بہرحال ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ مجھے اگر انٹرنیٹ تک آپ کی رسائی نہیں ہے اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن میں جائیے 101 لکھیں اسپیس دیں اپنا نام اور پیغام لکھیں اس کو بھیج دیں 4471 پہ اینڈ ڈو کال می 04221100101 00101. I love this track. Let's enjoy this track. اے تیری اوڑی بھی لفظوں میں ہی کہہ رہا ہوں میں گل کچھ ہو رہی ہے پیچھے لفظ بڑی باتیں چھپا جاتے ہیں سمجھے نا

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:13 और आज है जी 24 सितंबर 2026 का सेना एफ एम 101 रेडी पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम आई एम एंजॉयिंग इट। एक्चुअली हंसते हंसते मैं जा रहा हूँ, आज फलसफा मैंने छेड़ लिया तो छिड़ा ही रहे। तो छिड़ चुकी है बात जो अब जिक्र के तेरे, तो ख्यालात मेरे जो बहकने के लिए तैयार। तस्वीर मैं तेरी बनाऊंगा, हाँ सबको दिखाऊंगा, मगर क्या करूं कि ख्यालों में उभरती हुई यह तस्वीर दिखाई नहीं जाती। हाँ मैं सबको अब बताऊंगा, अपने लफ्जों में तुझको मगर छुपाऊंगा, फिर भी सबको बताऊंगा। हाँ ये बट साहब कैसे शर्मा रहे हैं माइक से, पास आए ना माइक के, शर्माते क्यों हैं आप माइक से। अच्छा जी, बट साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं। बट साहब लफ्ज क्या होता है?
1: सर लफ्ज मेरी नज़र में पहली बात तो कम्युनिकेट करने का जरिया आपका, okay. और सेकंडली आपके ख्यालात को जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो लफ्ज है।
0: ख्याल कहाँ से आता है?
1: ख्याल आपकी सोच से।
0: सोच कहाँ से आती है?
1: अल्लाह ताला देता है।
0: अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बना के भेज दिया
1: जी।
0: किताब अगर आप पढ़ें, किताब रू, यहाँ आप फतूहात मक्किया, यहाँ आप बल्कि सीधा हम उस पर आ जाते हैं, सुपरमैन इन इस्लाम की अगर बात करते हैं ना, तो उसमें जाबिर बिन हयान की गुफ्तगू है हज़रत इमाम जाफ़र से। तो हज़रत इमाम जाफ़र कहते हैं कि दुनिया जो है ना सेट कवानीन का एक बना हुआ है, उसके तहत चल रही है।
1: बिल्कुल।
0: मोजज़ात उनको कहा जाता है जो उन कवानीन से हट के चीज हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: वो कहलाती है मोजज़ा, ठीक है? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोजज़ा।
1: यस।
0: और जो वो नहीं चल रहा उसके मुताबिक, अगर नहीं उससे हट के नहीं चल रहा, रूटीन में है, तो वो आपके कवानीन फॉलो हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अल्लाह ताला ने आपको उस कानून के अंदर एक सलाहियत दे के पैदा कर दिया
1: जी।
2: बेशक।
0: अब आपने बताना है, वैसे तो खालिक मालिक हर शय का वही है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, लेकिन बाइख्तियार बनाया। सोच कहाँ से आती है?
3: सर सोच दिमाग से आती है।
0: आप साहब आप अहमद भट्ट हैं?
3: मुझे मेरे
1: कोशिश कर रहे हैं बनने की।
3: मुझे याद आ गया था, मैंने कहा बोल देता हूँ।
1: काफी तक तो सही बताया कि सोच दिमाग से आती है, लेकिन वो आपके
0: दिमाग के अंदर आती कहां से है, क्यों आती है? दिस इज द क्वेश्चन। ये वो सवाल है जो आपको अपनी जात से पूछना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: एक्सप्लोर फिर ही आप चीजों को करेंगे ना।
1: सर मेरी नजर में इंसान के जो रोजाना के न्यू एक्सपीरियंसेस हैं और न्यू एक्सप्लोरेशन है, जो चीजें देखते
0: हैं, कहीं करीब करीब पहुंच रहे
3: हो, एहसासात वगैरह
0: कहीं ना कहीं करीब पहुंच रहे हो, करीब पहुंच रहे। हाँ जी हसीब, व्हाट इज योर ओपिनियन? आप पहुंच गए हो करीब?
4: मुझे लगता है सोच आपकी ऑब्जर्वेशन से बनती है।
0: ऑब्जर्वेशन कैसे होती है?
4: ऑब्जर्वेशन जब आप कोई नई चीज देखते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे बनी है, क्या है,
0: वही वापस
4: इसका स्ट्रक्चर।
1: बिल्कुल
4: है ना,
0: एक स्टेप आगे जाके फिर वापस आ गए।
4: ऑब्जर्वेशन जब आप कोई,
0: ऑब्जर्वेशन कैसे करते हो?
4: जब भी किसी चीज को देखते हैं
0: और
4: सुनते हैं
0: और
4: आप अपनी सेंसेस यूज करते हैं।
0: बिल्कुल। हवा से खमसा,
4: हाँ। तो वहां से आपकी सोच बनती है, ऑब्जर्वेशन से।
1: ये कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं मेरे ख्याल से।
0: हवा से खमसा का इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल।
0: तजुर्बा, उसके बाद हवा से खमसा आपको तजुर्बात से आशनाई करवाते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: जब आप देखते हैं महसूस करते हैं, एक नया एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस जब हासिल करते हैं हम नासिर, वो किधर जाता है?
5: सर वो फिर हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, जो एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं और फील करते हैं।
0: मेमोरी का हिस्सा बन गया, फिर वो किस काम आता?
5: फिर वो हमारे फ्यूचर में अगले डिसीजंस करने के लिए, करने में वो हमें काम देता है।
0: देन इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस।
5: एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली।
0: जब आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, फिर आप उसे टेस्ट करते हैं।
5: एग्जैक्टली।
0: टेस्ट करने के बाद क्या होता है शहीद? जो आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने एक्सपीरियंस लिया, अच्छा यार मैंने देखा था वो बिलाल बॉल जो है दीवार को मार रहा था, बॉल वापस आ रही थी, आपने देखा कि यार वो बट गया था किसी को, उसने कहा मुझे अच्छी लगती है, आगे से थप्पड़ पड़ गया। सही ऐसे नहीं हुआ था।
1: कुछ रिलेट कर
0: गया, रिलेट कर गया, बट देख रहे मैंने कब बताया ये आपको कैसे पता चल गया।
5: जी जी आप बात कर रहे
0: थे। हाँ आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, आपको एक्सपीरियंस हासिल हो गया, फिर टेस्ट करते हो आप कैसे करते हो?
5: टेस्ट हम अपनी उन तमाम अपने मतलब जो डेली लाइफ के कोर्स हैं उनमें करते हैं।
0: यूजुअली बेसिकली
5: मैंने वो बंद कर दिया आपने कह दिया
0: लड़का है। वेरी गुड वेरी गुड।
5: तो टेस्ट हम करते हैं अपने जो डेली कोर्स हैं उनमें, ताकि जो भी एक्सपीरियंस हुआ है हम उससे कुछ सीख सकें, वो हमारे लिए कैसे।
0: तो टेस्ट करना पड़ता है आपको
5: मोस्ट ऑफ द टाइम?
0: मतलब आपका भी दिल करता है मैं थप्पड़ खाऊंगा तो यकीन होगा, हक्कुल यकीन की कैफियत
5: नहीं तभी आएगी। वो एक्सपीरियंस हो गया ना कि मैं ऐसे अप्रोच करूंगा तो थप्पड़ ही खाऊंगा, तो ये आप
0: डिफरेंट वे
5: अडॉप्ट करेंगे। यस एग्जैक्टली,
1: यानी बाज नहीं आना,
5: बाज करना है। एक ही तरफ आ गई है फिर से।
0: दीज आर द थिंग्स। बाहर लव्स जो है, अब हमने सफर तय कर दिया
1: जी,
0: लव्स आपके ख्यालात, आपके तसव्वुरात, और वो कहाँ से आते हैं? आपके हवासे खमसा से हासिल होने वाले तजर्बात से।
1: yes.
0: और तजर्बात आप अपनी रियल लाइफ में जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो
1: जी,
0: उसका अच्छा या बुरा नतीजा देख कर उसके अकॉर्डिंगली, अगर बुरा लगता है थोड़ा चेंज करते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं अप्रोच और तरह करूँगा। नहीं तो फिर कहना पड़ जाता हो नहीं बाजी आप गुस्सा कर गए। मैं तो कुछ और कह रहा
5: था, मतलब कुछ
0: मेरा मतलब ये नहीं था जो आपने
2: समझ लिया। तो
0: बात समझने की है ना, फिर यहाँ से एक्सपीरियंस और वहां से फिर जब आप खुद उसे प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो आपके अंदर रियल टाइम थ्योरीज बन रही होती हैं। थ्योरीज जब टेस्ट होती हैं, टेस्ट होने के बाद आपके अंदर स्टोर हो जाती
1: है। यस,
0: अब जो रिजल्ट आता है ना, वो आपके अंदर किस चीज को ट्रिगर करता है?
3: सवाल को, मुझे लगता है। मतलब फिर वो एक सवाल पैदा हो जाता है दिमाग में, फिर वहां से आपको जवाब मिल जाता है कि अभी मुझे ये करना चाहिए।
0: इस्लाम कह रहे हैं सर आप सबको थप्पड़ पड़वा रहे हैं, सर आप तो आ तुम्हें पड़वाने का ज्यादा दिल है मेरा,
1: इस्लाम
0: बाकियों को बिल्कुल ही मेरा दिल करता है, यकीन करो। अच्छा कॉल, हेलो हेलो, इस्लाम हमारा इंटरनी है इसलिए मैंने छेड़ा उसे, आप ना परेशान हो, आप लोगों को नहीं कहता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं
0: जी? ठीक ठाक जी, आप बताइए।
6: शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ।
0: ठीक हैं आप?
6: जी जी,
0: पक्की बात है। खाना शाना खाया? आज आवाज नहीं आ रही आपकी।
6: आवाज आज दरअसल मैं ना मरी गई थी, तो वहाँ की बहुत एलर्जी होती है, वो बस
0: आप तो मरी गई थी
6: जी।
0: हमें क्यों बता रही हैं? हमें जला रही हैं आप बता के, हमें जला रही हैं?
6: नहीं नहीं आज नहीं, आज तो इस्लामाबाद के मौसम मरी बना हुआ है, बारिश हुई
0: थी। आज लाहौर में भी सुबह बारिश हुई थी जब हम सोए हुए थे।
6: प्यारा मौसम हो गया, बस चेंज हो रहा है मौसम तकरीबन।
0: मौसम प्यारा किसी से ही होता है, अकेले नहीं होता।
1: क्या कहने,
6: गहरी बात, गहरी बात।
0: हाँ जी, अच्छा क्या कह रही थी आप?
6: इतनी प्यारी अपने मैसर लगाई हुई, तो मौसम बड़ा प्यारा है जो सुन रहे हैं। मैं
0: नहीं नहीं, इनके साथ बैठ के नहीं प्यारी फील आती। आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम, क्या कह रही हैं आप?
6: सीख रहे हैं आपसे बहुत कुछ।
0: हाँ नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सीख रहा हूँ और इनसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ।
6: आप वो आपसे सीख रहे हैं, मुझसे क्या सीखेंगे हम, क्या चीज?
0: और नहीं नहीं, मेरे से नहीं सीख रहे, वो बहुत तेज है।
6: अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, दो दिन करते हैं लेकिन बहुत जबरदस्त।
0: आप ये बताइए फिर, अल्फाज जो हैं वो हमारे ख्यालात से, ख्यालात हमारी ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन हमारे हवास खमसा से, हवास खमसा से सीखने के बाद तजर्बात, तजर्बात को फिर टेस्ट करते हैं, फिर जो नतीजे आते हैं उसके बाद हमारे अंदर क्या चीज ट्रिगर होती है?
6: हमें यकीन हो जाता है।
0: यकीन हो जाता है, बिल्कुल ऐसी हक्कुल यकीन की कैफियत पे आ जाता है। नतीजा आने में या आपको खुशी होती है या गम होता है?
6: खुशी होती है
0: या गम होता है? अगर मर्जी का ना आए तो गम होगा,
6: वो तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन खुशी होती है, फिर बंदा बार बार उस चीज को ट्राई करे।
0: हाँ नहीं जी, थप्पड़ एक दफा ही खाया जाता है। बार बार थोड़ी खाया जाता है।
6: नहीं नहीं, बार बार
0: दिखा ले
6: कोई बात नहीं है।
0: नहीं मैं आपके इस तजर्बे के कायल नहीं हूं। बार बार नहीं खा सकते।
6: आप करें फिर पता क्या, तसल्ली तभी होगी ना जब आप अच्छे तरीके से, आपको पता चल जाएगा, आप उसमें कामयाब हो जाएगा।
0: नहीं मैंने एक दफा खाया, उसके बाद मेरी तसल्ली हो गई है।
6: आपने फिर अच्छा कर लिया होगा ना, अच्छा काम कर
0: लिया। नहीं उसके बाद मैंने तय कर लिया, एक बस छोड़ दो, एक काम नहीं ठीक,
1: अंगूर खट्टे हैं।
0: तो तजर्बात फिर आपके अंदर एहसास जगा देते हैं ना जी, खुशी का एहसास या गम का एहसास जागता है ना।
6: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: इसके बाद फिर अगली स्टेज क्या होती है?
6: अगली स्टेज क्या होती है? बस खुशी होती है, क्या होता है, लोग दिल करता है कि हम भी ऐसा करें, सोचता है, दिमाग सोचता है। मैं एक चीज देख रही थी, सॉरी
0: जी जी,
6: जब मैं नॉर्मल थी, मैं मेरे ना अपने गार्डन में बार बार बाग में गई हूँ, तो मैं वहाँ देखती चिड़िया थी, वो चिड़िया बार बार एक तिनका लेके जाती, उसने फिर एक घोंसला बनाया था।
0: ठीक है जी।
6: घोंसला बना रही थी, मैं उसको देखती, उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, फिर जब वो कुछ दिनों के बाद वो तैयार हो गया, इतना इतना बड़ा वो तिनका लेके जा रही थी, इतना जबरदस्त, इतने डिजाइनिंग में आपने देखा होगा ना, वो घोंसले बनाती है दो तरह की, एक टोकरी टाइप होता है, एक होता है जैसे ना आप शूज होते हैं वैसे होते हैं।
0: ओ भाई पंखा,
6: तो
0: वो
6: मैंने देखा है, तो फिर वो देखा चिड़िया थी ना, जब बन जाता है कुछ दिनों बाद बड़ी खुश होती है उसको देख के।
0: अच्छा जी।
6: पीछे उसकी फिरती है।
0: अच्छा, मैंने आज तक चिड़िया को मुस्कुराते नहीं देखा, आप तो बड़ी एक्सपर्ट है।
6: मुस्कुराते देखा नहीं था उसको मैंने,
0: नहीं मैंने कभी नहीं देखा। कभी आपने चिड़िया को हंसते हुए भी देखा?
6: नहीं मैंने देखा तो नहीं, लेकिन
0: आप नहीं, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, वो सक्सेस के बाद जो है ना, व्हेन यू आर सक्सेसफुल तो यू फील गुड, यू आर राइट, यू आर राइट।
6: जब सर मैं जब से ब्लाइंड हुई हूँ ना, मैं कुछ चीजों को देखती हूँ, अल्लाह ताला ने वो सिक्स सेंसेस होते हैं इंसान के, अल्लाह ताला ने इतना है कि मैं जब कुछ चीज कहती हूँ, मैं पूछती हूँ घर वालों से, ये क्या चीज है, ऐसे कह रही है, या मैं कोई बात कर रहा है उसकी बता, उसकी हाई कितनी है,
0: सेहत वाली अच्छी जिंदगी दे। बहुत अच्छा लगता है जब आप फोन करती हैं।
6: मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मानती।
6: नहीं नहीं मैं तो खुद,
0: अगर आपको बुरा लगे तो आपने फिर जो है ना मुझे कोई गिफ्ट भेजना, ठीक है?
6: नहीं अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे, गिफ्ट क्या लेंगे बताएं।
0: दुआएं कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है, बताएं, फिर आपने टेस्ट कर ली थ्योरी, उसके बाद वेयर इट गोज, कहां जाती है
1: सर?
3: सर वो सवाल बन जाता है ना, फिर
0: ऐम ही बन जाता है, अपनी तरफ से ही सवाल बन जाता है, सवाल पहले होता है, उसके बाद आप जो है ना उस पर डिसीजन कर लेते हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर आप सवाल पे अपने आप को कन्विंस करने के बाद आप तय कर लेते हैं, फिर आप करते हैं। अगर आप कन्विंस्ड है यू डू इट, इफ यू नॉट कन्विंस्ड यू डोंट डू इट। सिंस आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग इट। मैं कन्विंस था, मैंने अपने आप के अंदर सवाल जवाब किए, बाकी बैठे हैं। हाँ, वो भी बैठे।
5: अच्छा सर, इस बात से एक थोड़ा सवाल हम सबके जहन में आता है, क्योंकि आप बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस जो है हम सबसे इसमें सीनियर भी हैं, तो एक चीज़ जो है हम सब में, देखें हम सबको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और हमने एक्सपीरियंस बड़ों से भी हम सुनते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह कर लेना तो बेहतर हो जाएगा, वैसा कर लेना तो ठीक है, लेकिन जब हमें खुद ठोकरें पड़ती हैं तो फिर हम सीधे होते हैं या फिर हम बेहतरी की राह पर चलते हैं, पहले हम नहीं चलते, इसकी क्या वजूहत हैं? हमें पता भी होता है पहले कि यार इस तरह अगर हम करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमें हमारे बड़ों ने, हमारे वालदैन ने, या फॉर दैट मैटर किसी टीचर ने कहा है, लेकिन जब तक हमें खुद नहीं ना कुछ होता तब तक हम बाज नहीं आते, ये सबका एक है सवाल।
0: ये तो रियलिटी सवाल नहीं है, ये तो हकीकत है, जब तक आप खुद से टेस्ट नहीं ना करते आपके अंदर अर्ज होती है कि शायद मैं करूँ तो ऐसा ना हो। यूनिवर्सल लॉ है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं कर जाते हैं कि जब तक नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा।
5: बिल्कुल ऐसे
0: ही। देयर सो मेनी थिंग्स, हमें कहते हैं कि पढ़ा करो पढ़ा करो, पढ़ने से बेनिफिट होगा।
1: बिल्कुल।
0: ये काम करो, रात को जल्दी सो जाया करो, लेकिन जब तक हम एक्चुअली अपने ऊपर ना कर लें एक्सपेरिमेंट, उस वक्त तक हमें पता नहीं चलता।
5: नहीं चलता।
0: कॉन्सिक्वेंसेस देखने से आपके यकीन की कैफियत बढ़ जाती है।
5: बढ़ जाती
0: है। ऐनुल यकीन, आंख से देखा, निगाह से देखा और उसके बाद जान लिया। लेकिन हकुल यकीन की कैफियत तब आती है जब आप प्रैक्टिकली किसी शय को परफॉर्म करते हैं। व्हेन यू परफॉर्म अ थिंग, उसके बाद आपके अंदर कैफियत वो यकीन की बन जाती है। हाँ, अब मैंने खुद करके देख लिया, मुझे पता चल गया ये चीज ऐसे होती है।
5: बंदे का
0: तो ये कैफियत है।
5: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
0: सुना, देखा और किया, ये मनाजिल है। ये मनाजिल आप तय करते हैं, ये आपकी फितरत के अंदर है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो बगैर किए किसी के कहे पे मान लेते हैं।
5: मान
0: लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, पॉसिबल नहीं है। और अगर अदरवाइज देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि यार ये तार जो है ना, इसे हाथ नहीं लगाना, करंट पड़ेगा। आपने कहा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, आपने कहा ठीक है, आपने नहीं लगाया। मैंने शहीद को मना किया, तुमने हाथ नहीं लगाना, ये भी सुन रहा था ये, कह मैं तो लगाऊंगा। इसने हाथ लगाया, इसे करंट पड़ गया। तीसरा बंदर बंदा यहाँ पे भी था, बंदर कह दिया मैंने। नहीं हमदा, आपकी बात नहीं। वो नाम आपके लेने लगा था मैं, बंदा वो।
5: चलिए,
0: तीसरा बंदा उसने देखा कि पहले तो रुक गया, दूसरे को करंट पड़ा, उसने कहा हाथ तो मैंने लगाना है, लेकिन मैंने किस तरह से लगाना है करंट ना पड़े। तो उसने सोचना शुरू किया, उसने फिर ग्लव्स इन।
5: चलिए,
0: तीसरा बंदा उसने देखा कि पहले तो रुक गया, दूसरे को करंट पड़ा, उसने कहा हाथ तो मैंने लगाना है, लेकिन मैंने किस तरह से

0: आपकी एवोल्यूशन नहीं होता, एवोल्यूशन तभी होता है जो चल रहा है उससे थोड़ा सा हट के परफॉर्म,
1: आउट ऑफ द बॉक्स,
0: फिर एवोल्यूशन तभी आता है, तरक्की तभी होती है। सो
1: वेरी सिंपली पुट ऐसे,
0: और ये माइंडसेट डिफरेंट होता है
2: बिल्कुल
1: ऐसे ही।
0: हर किसी की ख्वाहिश जरूर होती है लेकिन करने वाले चंद एक होते हैं, और वही जो है नई से नई तरक्की, आज कहां से कहां पहुंच गए। अगर इस तरह की सोच के लोग ना होते तो शायद हम कच्चे मकानात में होते, शायद आज गाड़ियां ना होती, शायद आज मोबाइल ना होते,
1: हवा में ना होते।
0: सही बात है, जमीन पे बैठ के भी हवा में उड़ जाते हैं। हाँ बहुत तजर्बाकार है वो, कहते मैं सवेरे थे अमरीका तो आया। तू कह रहे हैं वो क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मनोहर सान
0: जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन?
3: लाइका बात कर रही हूँ मुल्तान से।
0: लाइबा मुल्तान से?
3: मलाइका।
0: ओ माय गॉड, सिद्ध ही सत्य सतवें आसमान। तो कैसी हैं आप?
3: ठीक, आप ठीक हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। मेरे पास इस वक्त यहाँ पे माशाल्लाह 6 साहिबान मौजूद है, मेरे अलावा किससे बात करना चाहेंगी?
3: फिलहाल तो आपसे।
0: और मेरे बाद किससे?
4: फिर भी आपसे।
3: शायद कोई नहीं।
0: अच्छा चलें करें। हेलो कान बंद कर लो जी। बताएं मलाइका,
3: आप टॉपिक बताएं ना, मैं आपकी कब से कॉल मिल रहा आ रही थी, कॉल ही नहीं मिल रही।
0: टॉपिक ये है कि लफ्ज कहां से आते हैं, लफ्जों की हमें जरूरत क्यों है।
3: लफ्ज हमारे पास तब आते हैं जब हमारे पास कोई सिचुएशन हो, कोई न्यूज़ के टॉपिक वगैरह, जब हमें कुछ बात करनी हो किसी, तब हमारे पास अल्फाज आते हैं।
0: वो तो आते हैं, आते क्यों
3: हैं? आते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अल्फाजों को अदा करना होता है, इसलिए वो आते हैं।
0: कर्जे भी अदा करने होते हैं, पैसे तो नहीं आते। मैंने भी अदा करने, पैसे क्यों नहीं आ रहे, लफ्जों की तरह आ जाते
3: हैं। नहीं, मैंने लफ्ज बोले हैं भैया।
0: अच्छा
3: जी, और ना मैंने आपको फेसबुक पे भी सर्च किया था।
0: फिर डिसअपॉइंट तो नहीं हुई?
3: नहीं
0: नहीं नहीं, बता दे कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा अगर ज्यादा डिसअपॉइंट हुई है फिर ना बताना। अगर ज्यादा डिसअपॉइंट हुई है ना फेसबुक पे देख के तो फिर नहीं बताना, थोड़ा सा हुई है तो बता दें।
3: मैं कहते रही हूं आपके बाल सफेद थे,
0: है ना?
3: हां जी,
0: इतने काले भी हो जाते हैं। और
3: आपकी आवाज में मींस के कितना डिफरेंट है, आपकी आवाज में जो मींस के है, पर आपकी मैं पसल पास ही है, मैं अब कैसे आपको बताऊं?
0: मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है?
3: नहीं नहीं, आप सब हंसो तो ना, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं कितना कहना चाहती हूँ।
0: अच्छा बस मैं समझ जाऊँ ना, अगर आवाज अच्छी, शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे।
3: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सूरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत का क्या है, सूरत अच्छी होनी चाहिए इंसान की।
0: हाय ये भी आई विश के अगर ये बात हो सकती मौजूद होता। चलो मलाइका थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू।
3: एक मिनट ना भैया, आपको पता है मैंने एसएम पे भी फर्स्ट टाइम कॉल की थी, मुझे बहुत खुशी थी भाई, मैंने एसएम पे फर्स्ट टाइम कॉल की थी और मुकम्मल पाकिस्तान मेरी आवाज़ सुन रहा था, मुझे इसकी खुशी भी थी, और इस खुशी की वजह आपकी आवाज़ है, आपका शो है, आप जिस तरीके अंदाज से शो करते हैं हमें बहुत पसंद आता है।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
3: और ना प्लीज एक सॉन्ग भी डेडिकेट कर देना मेरे लिए।
0: अगला सॉन्ग आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, मेरी पसंद का सुन लो आज।
3: नहीं भाई,
0: अगले शो में आपकी पसंद का।
3: चलो ठीक है,
0: ठीक है,
3: अल्लाह
0: अल्लाह
3: हाफिज़।
0: रेहाना है जी बखर से सुन रही है हमें, और गुलाब ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अली जिया ने सलाम किया। आरजे डॉक्स आज माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। फिजा राजपूत ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, इतना जल्दी आ गए देख लें, और आपकी मेहरबानी है। धूप में बारिश हो जाती है, ये कौन सी नई बात है? हाँ रेनबो निकलता है, वो बाद में ओदी अम्मा पढ़ के उन्हें कूट दी, बाहर क्यों निकले तो रेनबो निकल आता बाहर। सनाउल्ला सना राजपूत, सनाउल्ला राजपूत कह दिया। अस्सलाम वालेकुम

0: Happy
1: मैंने बोल दिया ना हम लोग
2: हैप्पी बर्थडे
3: हैप्पी बर्थडे
1: थैंक यू सर ओके रहमान भाई आ जाए मेरा ख्याल है अब यहाँ पे आप तशरीफ रखें और काफ़ी ज़्यादा हमने बात की आज हंसते हंसते लफ्ज़ के ऊपर बात चलती रही हम शुगर लगाते कर गए अच्छा जी फराफ़ज़ाल कहती हैं सॉरी इतना लंबा मैसेज कर दिया उस फ्लो में लिखती गई देखें इशारे हमारे लफ्ज़ इस तरह हमारे लफ्ज़ आया भी हो जाते हैं खुश रहें सब है ना सही कह रही हैं आपने बड़ी लंबी बात कर दी थी ओए होए होए थैंक यू वेरी मच शाहजेब शाजू सर आप भी करें ना
3: क्या
1: डांस की बात हो रही थी भाई सारा क्रेडिट द बेस्ट डांस का रहमान भाई को जाता है उनके आने से डांस में चार चांद लग गए हैं बेशक एंटरटेनमेंट वाओ एंड वाओ ऑल ग्रेट डांसिंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू निलमा रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने तो थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया ओएमजी क्या बात है बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने हमारे डांस को चले मेहरबानी जी जी ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ योर एजुकेशन रियली प्रेज योर एक्सपीरियंस गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर ऑन द वे ऑफ योर क्लासिक सक्सेस थैंक यू वेरी मच निलमा एंड आई एम रियली वेरी ऑनर्ड वंस अगेन दैट यू आर इन माय शो गोना रीड सम मैसेजेस फ्रॉम FM 101 वाले पेज से भी रीड कर लें और उसके बाद फिर मैं इजाज़त दूंगा आपसे फिर सारे रहमान अनवर के हवाले जी अकबर ख़ान साहब ने सलाम किया वालेकुम सलाम कबल नाज हैं थैंक यू वेरी मच कंजा उस्मान ओके थैंक यू वेरी मच जी आपके लिए दुआएं हेलो सलाम अलैकुम जी
4: जी असद साहब आपको और आपके साथियों को रहमान अनवर साहब को तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से
1: कैसे हैं भट्ट साहब आप खैरियत से ठीक हैं
4: अल्लाह का शुक्र है हम तो उदास हो जाते हैं बड़े दिनों के बात ही नहीं हुई थी मैंने कहा बात हो जाए बस दिल कह रहा था कि आज बात हो जाएगी जरूर
1: दिल कह रहा
3: दिल की सुनी गई
4: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब बात सुने आप तो अपनी फील्ड के डॉक्टर हैं डॉक्टर इसने PhD की हुई है आपने
1: जी जी।
4: तो ये आपके नए जो अटर्नी आए हैं माशाल्लाह ये भी बड़े जहीन है अच्छा अगर पुराने आरजीए को अब आपका प्रोग्राम होता है ना पीछे वो BGM कहते हैं उसे आप म्यूजिक लगा होता है बड़ा धीमा धीमा बड़ा मजा आता है
1: जी जी।
4: आपकी आवाज वाजे आ रही होती कई आरजीए के प्रोग्राम होते हैं वो म्यूजिक वो उनका BGM ही बस जैसे वो याद कराने आए हैं उनकी बातें उनकी समझ नहीं आती लेकिन वो पता क्या होता है बिल्कुल किसी ने कहना ना किसी आरजे ने कहना मैं सुबह ठंडा पानी पिया मेरा गला खराब हो गया तो आप ये पूरे लाइन बोलने
5: के बाद ही कल्ठा गला खराब
4: वो पता क्या कहते हैं मैंने वो म्यूजिक आ जाता है ठंडा पानी पिया म्यूजिक आ जाता है गला खराब हो गया
5: यार क्या हो गया आपको भट्ट साहब
4: वो ऐसे लगता है जैसे चिंगठी में स्पीकर लगा हुआ है जो वो पीछे म्यूजिक है ना उसकी आवाज आरजे की आवाज से कम होनी चाहिए आरजे की आवाज जोरदार आवाज होती है
1: बिल्कुल ठीक हो गया भट्ट साहब ठीक हो गया थैंक यू वेरी मच
4: ठंडी खीर खा रहे हैं ठंडी ठंडी खीर बर्फ पे लगी हुई खा रहे हैं
1: क्या बात है क्या बात है आपकी आ गए सर
4: आप मिलते नहीं है क्या करें बस
1: सर शर्म आती
4: है आपको आप इस्लामाबाद जाते हैं दूर दूर रहते हैं लाहौर वालों को छोड़ के परा परा जाते हैं अल्लाह खैर करे जहाँ भी जाए आप खैर वफियत से हो सबको
1: बहुत शुक्रिया
4: इस्लाम का
1: थैंक यू
4: सर आपको खैर वफियत से रखे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम क्यों चल किसका देग आज इतने लंगर ही चलेगा लफ्ज हमारी शख्सियत की पहचान भी बन सकते हैं लफ्ज हमारी हमें फजूल लोगों में और बेवकूफ में भी शामिल कर सकते हैं घेरा कह रही हैं जी, सम वंस वर्ड कैन डिस्टर्ब अस, वर्ड कैन मेक अस हैप्पी, वर्ड कैन आल्सो मेक अस सैड। हेरा फातिमा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल सच्ची बातें कह रही हैं, कहाँ से सीखी हैं आपने बातें। अच्छा जी, शमसी लिसनर क्लब वाले सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अकबर खान साहब कराची से बड़े अच्छे लिसनर हैं, हमें सुनते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी फॉर लिसनिंग जी। और मुझको मारा है हर एक दर्द दवा से पहले, दी सजा इश्क ने हर जुर्म खता से पहले, हम उन्हें पाकर फिराक और भी कुछ खो गए। ये तकल्लुफ तो न थे अहदे वफा से पहले।
0: वाह,
1: अच्छा फिराक तखल्लुस है,
0: तखल्लुस
1: मैं
0: है।
1: फिराक लफ्ज बना मैं इसलिए सोचने लग गया, हम उन्हें पाके फिराक
0: फिराक।
1: अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है जी। अच्छा फराक
0: फराक
1: अच्छा फ्रॉक फ्रॉक ओके अच्छा जी ओके। नज़ीर कोसो साहब आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अकबर खान साहब आपकी भी मेहरबानी। सिदरा कुरैशी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम असदी सर, हाय हाय क्या बात है, कैसे हैं आप, वेलकम। आपको मैं आपका मैं वेट कर रही थी आपका, सिदरा कुरैशी मंदरा से ओके, थैंक यू वेरी मच सिदरा, बहुत शुक्रिया। एंड समीउल्लाह सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
2: अस्सलाम
1: वालेकुम, अस्सलाम,
2: हाउ आर यू,
1: आई एम फाइन
2: ओके।
1: कौन है हमारे साथ?
2: स्पीच इज वेरी गुड
1: है,
2: जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया कॉल करने पे।
1: आप कौन?
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से
1: जी, करें।
2: अच्छा मैं ना वो हमना उस्मान की ना, तो उसने एक बात नोट की है मेरी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने ये नोट किया कि हाँ मतलब कहीं ऐसे होती हैं इंसान जिनमें थोड़ा सा भरापन होता है और फिर उनको अपने एज से भरे लोग पसंद आते हैं। तो ऐसे ही होता है कि मेरे साथ अगर कोई मतलब मेरी जो ज़्यादातर फ्रेंड्स होती हैं वो एज में भरी हैं मुझसे, तो अक्सर फ्रेंड्स तो ऐसे हैं जिनके दो दो तीन तीन चार चार बच्चे भी हैं, तो इस तरह की मेरी दोस्तें हैं। और शायद मतलब क्लास में सारे ही बच्चे ऐसे नहीं होते जिनको अपने मतलब एज से भरे लोग पसंद आते हैं, या इस तरह काम ही बच्चे होते हैं जैसे मैं हूँ और भी होंगे दो।
1: अच्छा अच्छा, अपने मुँह से ही तरीका है। अच्छा अच्छा, ये अपनी बहुत तारीफें करती है रहमान भाई, पता है ना आप बिस्मा है। अच्छा क्या कह रही
2: है,
1: तारीफें बहुत जैसे मिसाल देके ना फिर कहती है जैसे मैं हूँ हमेशा मिसाल देगी और फिर कहेगी जैसे मैं हूँ। ये आप लोगों के साथ इंटर्नशिप फेलो बनने वाली थी, इंटर्नशिप फेलो बनने वाली थी, अब्बा ने कहा नहीं जैसे तुम हो ना ऐसे घर में रहो।
2: मेरे पापा ने डबल एम ए किया हुआ है और वो कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे, तो मैंने कहा आप सोच लेते काश फिर आपके बच्चे ऐसे ना होते, शायद सोचने से ही कुछ चेंज हो जाता। तो वो अक्सर ऐसे कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी औलाद ऐसी होगी, तो मुझे हंसी आती है उनकी इस बात पे ना जब ये डायलॉग बोलते हैं वो, मैं तो उनको ये डायलॉग समझ रही हूँ, ये आपका डायलॉग है। तो ये सीन मैंने कहा आपने हमारे हिस्से का पढ़ लिया ना, तो हमने अब हमें क्या जरूरत है पढ़ने की डबल डबल एम ए करके, तो क्या जरूरत पड़ी हुई थी आपको। हाँ आपने हमारे हिस्से का पढ़ लिया भाई। और हाँ देखो जैसे हमना उस्मान है ना वो अपनी एज में छोटी है, जब हम देखते ना कि जब छोटे बच्चे सियानी बातें करते हैं बहुत अक्लमंदी वाली बातें कर रहे होते हैं, हमें कितनी खुशी होती है, हम कितना खुश होते हैं। तो जितनी खुशी हमें तब होती है छोटे इंसान को अक्ल वाली बातें करते हुए, ठीक है, तो उतना ही अफसोस हमें तब होता है जब एक इंसान एज में भरा हो और वो बच्चों जैसी हरकतें करे और इस तरह की नदानियां करे,
1: जैसे मैं
2: उतना ही अफसोस हमें तब। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आप खुद ही देखो जैसे मैं अपनी तारीफ करती हूँ वैसे आप भी अपनी तारीफ करते हैं।
1: मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं करता हूँ ऐसे।
2: हाँ तो ये मैंने आपसे सीखा ना, जैसे मैं हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं क्लास में ऐसे करता था।
1: यार जरा दिल तो बच्चा है, ऐसी उलझी नजर
6: से। आप याद कर रहे हैं, अभी जब आपने शुरू कर दिया तो बराबरी मुश्किल हो गई है। ये गाना
2: रहमान नासिर भाई भी आ गए हैं, उनकी आवाज लगी।

0: पढ़ने
1: लगी है,
0: चेहरे की रंगत उड़ने लगी, क्यों डर लगता है तन्हा सोने में जी।
2: तेरा टेम्पो बड़ा स्लो है,
0: दिल तो बच्चा है,
2: दिल तो बच्चा है जी।
3: हाँ जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बिस्मा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छा लगा आपकी हमने बातें सुनी, थैंक यू, अल्लाह
2: हाफिज।
3: चलो जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और यहीं पे मैं आप लोगों से जा लूँगा, और रहमान भाई आ जाएं यार, आपका शो है, और आपका शो बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: हालात बदल गए।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो,
4: हाँ,
3: ये लियाकत साहब कैसे हैं?
4: बच्चों की आवाज आपने निकाली थी जाके
3: जी,
4: बच्चों की आवाज आपने निकाली थी जाके,
3: बच्चों की आवाज,
4: दिल, दिल तो बच्चा है जी।
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिल तो बच्चा है। हाँ जी, बताएं।
4: हाँ तो माशाल्लाह मोदू क्या है, मैंने अभी लगाया तो लाइट भी गई है हमारी।
3: सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर,
2: अल्लाह हाफिज।
3: ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और यहीं पे मैं माइक हवाले करता हूँ आज रहमान अनवर के, व्हाई नॉट मेरी जान। ओह यस, एनीथिंग यू वांट टू ऐड जी, आप में से कोई बंदा ऐड करना चाहे कोई चीज, कुछ भी,
5: बेहतरीन हो गया, मजेदार हो गया।
6: बस सर एक बात है कि लिव द मोमेंट, और जिस पे भी हैं बस खुश रहें, जहाँ पर भी हैं
5: खुश रहें और खुश रहने दें।
3: बस इस गाने की वीडियो नहीं देखनी, ओके?
6: आप देख सकते हैं।
3: तू लगना है, टेक केयर, बाय बाय। रहमान भाई यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं।

FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन। FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।

0: एक बार और, एक अंतरा और हो जाए, कुछ भी इसी का बेशक वापस कर दे रिपीट। ओ माई गॉड, मैंने यकीन कर मैंने ये अंदाजा ही नहीं लगाया था।
1: अच्छा,
0: मेरे जहन में ऐसा था ही नहीं। ओ माई गॉड, क्या नाम, क्या दोबारा बताना? हसीब, दोबारा से यार। अब मैं वाकई में पूरे वो क्या कहते हैं हमतन गोश होके सुन रहा हूं।
2: तो इसका अगला अंतरी सुना।
0: हाँ सुना।
2: एक

अच्छा ये आई एम रियली सॉरी, मैं ना भूल गया था दरअसल, मैं जब मेरा ऐसा है कुछ सिलसिला कि जब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ ना किसी चीज में तो फिर मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ या जो चीज मैंने करनी होती है दोबारा, लेकिन कोई और। अच्छा दोस्तों, जितने भी लोग सुन रहे हैं आज, आप लोगों ने ना अपने माइंड में कुछ नहीं रखना कि यार रहमान अनवर वो, मेरा ऐसा है कुछ सिलसिला कि जब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ ना किसी चीज में तो फिर मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ या जो चीज मैंने करनी होती है दोबारा, लेकिन कोई और। अच्छा दोस्तों,

0: अच्छा मैं अब इससे जुड़ गया हूँ,
1: बड़ी बात
2: देखिए,
0: मैं कनेक्ट हो गया हूँ इससे। ओ माई गॉड,
3: लेकिन
0: अल्लाह ताला ने क्या तुम्हें आवाज से नवाजा है और तुमने उसको क्या निखारा है
2: और क्या क्या निभाया है,
0: क्या निभाया है तुमने इसको।
3: ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं खराब हो जाऊं।
0: हाँ थोड़ा बहुत तो खराब होना भी चाहिए।
3: हाँ। हसीब से कुछ और सुनते हैं।
0: हसीब हसीब अहमद बिलाल बाद में टॉपिक पे बात करते हैं। एक एक ट्रैक और मेरे लिए, पाकिस्तानी कोई भी जो तुम्हारा दिल, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ,
3: पाकिस्तानी गाना।
0: हाँ कोई भी कोई भी कोई भी सना मारवी का कोई और गाना या कोई भी डिफरेंट किसी भी आर्टिस्ट का। वैसे तुम्हारा जो लेवल है, मैं हमेशा उन्हें पुकारता हूँ उस्तादे मोहतरम कह के, नुसरत फतेह अली खान, तुम्हारा जो लेवल है आवाज का वो वहां पे जाके टच हो रहा है, वहां पे जाके कहीं ना।
3: कवाली का एक अंतरा मुझे याद आ।
0: हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ।
3: तो वो मैं सुनाता हूँ, लेकिन बड़ी दुनिया और
0: आप बड़ी दुनिया हो गए हो और कमाल दुनिया हो गए हो। ये दुनिया, अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कम से कम मेरे लिसनर्स हमेशा नाम याद रखते हैं जब मैं पुकारता हूं ना किसी का नाम, कि हसीब, या फिर मैं अगर एक दो और नाम मेरे जहन में इस वक्त मेरे नहीं आ रहे, लेकिन मेरे लिसनर्स के जहन में होंगे जो यहां पे आकर गा चुके हैं सामने। इससे पहले मैं एक प्रोग्राम किया करता था जिसमें आर्टिस्ट को बुलाया करता था, ट्रैक्स जो गाते थे, सिंगर्स, गिटारिस्ट, बहुत से लोग आए, तो नाम याद रह जाता है लोगों को। आज के बाद हसीब आपका नाम भी याद रहेगा। सो सुनाओ
3: आप मुझे कोई कवाली बताएं,
0: जो कोई कवाली जो तुम्हारा दिल चाह रहा है,
3: क्योंकि मुझे लिरिक्स बोले होते हैं जो भी ऑनेस्ट,
0: उनके अंदाजे करम आता
3: बहुत कम
0: नहीं। अच्छा कम रहने दो।
3: वो आशिक कभी माशूक को रुसवा नहीं करते, उसका स्टार्ट बताइएगा।
0: आशिक कभी माशूक को रुसवा
1: नहीं करते, लिरिक्स निकाल लेते हैं
3: यार, लिरिक्स निकाल।
0: इसका यार बात होगी, इसका अंतरा मेरे जहन में नहीं आ रहा
2: यार। वो
0: कोई भी कोई भी कोई भी सुना दे। सांसों की माला, कोई और हो जाए। हाँ जो जो हो जाए।
3: सांसों की माला पे

0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका ना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: प्रेम

0: अच्छा ये जो मैं अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ हूँ ना, ये तुम्हारी ताजीम के लिए,
1: क्या बात है
0: कि तुमने क्या खूबसूरत गुनगुनाया, और ये मेरे पास अब हमेशा महफूज रहे।
2: तारीफ उस खुदा की
0: जिसने। ओह माय गॉड यार, ये तो अचानक से हालात, वो जो तुम कह रहे थे ना हालात, क्या तुम कर रहे हो, ये कौन सी हरकतें कर रहे हो तुम, ये क्या
2: यार, बहुत अच्छे,
0: ये तुम कह रहे हो लेकिन मेरे जहन में कुछ और चल रहा है।
2: नासिर भाई ने भी चार चांद लगाए हैं मेरा साथ देके, और
0: ओ जो अभी उसने जो मुर्गी सी, वो तुमने क्या क्या कहते हैं उसे यार, तुम्हें पता
2: है जगह लेना,
0: वहाँ जगह जो ली है ना तुमने, ऐसे पलटा है जो तुमने मारा, ओ हो बहुत अच्छा। एक एक हाँ नासिर यार, वो तो तुम्हारा, तो वैसे मैंने ये प्ले भी करना है ये ट्रैक यहाँ पे और ऑन एयर सुनेंगे, लेकिन एक ए आर नासिर है
3: उनके अंदाजे गरम।
0: अच्छा तुम्हें एक बात मजे की बताऊं, मैंने जब रेडियो स्टार्ट किया था ना, ए आर रहमान नाम मेरा रखा था, ए आर अवान, सॉरी कास्ट जो है ए आर अब्दुल रहमान तो है ना, ए आर अवान, ये मेरे पहले प्रोग्राम मैनेजर जो थे ना उन्होंने रखा। मैंने कहा सर दरअसल ना ए आर रहमान ऑलरेडी है
1: फील्ड में,
0: ए आर अवान जो है ना वो कॉपियर सा लगेगा, तो मैं उनकी कॉपी नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो कहते नहीं इस तरह से तू पॉपुलर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।

0: ऐसे हो जाएगा, एक अरसा ए आर अवान चला मेरा नाम ना वहाँ पे फैसलाबाद में। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, मैंने जब स्विच किया रेडियो, फिर मेरा रहमान अनवर नाम मैंने खुद रखा कि नहीं ये वजन में है प्रॉपर, और इसमें एक चीज भी है, रहमान भी है और अनवर भी है, फिर उसके बाद ये भी है। ए आर नासिर से आप कुछ सुनते हैं ट्रैक कोई?
1: आप बताएं क्या सुनेंगे
2: उनके अंदाजे करम प्लीज।
0: हाँ है,
2: बहुत अच्छा गाता है,
0: देख ला जे तू वाकई ये गाना वा ना
3: यार,
0: मैं इधर रख लेना अपने को, वीडियो लीक भी हो सकती है ये,
3: लेकिन अभी आईडिया नहीं है ये, अगर ज्वाइन करेंगे तो फिर कुछ बन जाएगा।
4: चलो मैं कोशिश करता हूं।
0: अच्छा, इसका ना बेहतराम एक डिफरेंट लेवल पे चला गया।
3: देख
0: ली, अब मैं इसको और नजरों से भी देखता हूँ।
3: आप हमें
0: अहमद बिलाल, बिलाल और अहमद, तुम्हारा नाम भी अहमद ही है? अच्छा, मैं दोनों चलना, मैं सोचा इन्हें भी अहमद बिलाल दसिया, इन्हें भी अहमद दसिया,
3: बट साहब बोलो
0: अगर मैं गलत कह दूं। नहीं नहीं, मैं नाम से
4: आप मुझे बिलाल बुला लिया,
0: बिलाल
4: से अहमद बुला लिया करें,
0: अहमद और अहमद। यार ये माइक तो दे दे मुझे अगर वो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा अहमद
2: भट्ट नाम
0: है, अहमद भट्ट है और ये अहमद बिलाल है।
2: यस सर।
0: तो वैसे दोनों आर्टिस्ट आएंगे ना यहाँ पे मजा बड़ा आएगा। लेकिन बिलाल वो करेगा कुछ, आरजे बिलाल या कुछ भी, जो भी तुम्हारा बेहतर लगे तुम्हें। तो मैं ये कह रहा हूँ इसका एक डिफरेंट लेवल अब मेरे जहन में ना, मेरे दिल में, क्योंकि हर इंसान ना एक मैं समझता हूँ कि हर इंसान में एक खूबी जरूर है।
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल,
0: कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो दूसरे से मुनफरिद करता है,
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: अलग करता है। तो बहुत से लोग गाते हैं ऐसी ऐसी आवाजें, मैं ना गाता नहीं हूं लेकिन मेरा कान बहुत सुरीले है, सुनता बहुत सुर में हूं मैं। अगर कोई सुर नहीं लगा ना तो मुझे पता चल जाता, मुझे पता चल जाता है कि नहीं यार ये ना, ये जगह भी थोड़ी सी उसने मिस की है। अगर कोई इंप्रोवाइज कर दे फिर मैं बिछ जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मारिया मारिया अगर तुम सुन रही हो ना तो मुझे कॉल करना, मारिया शहजादी अगर मुझे सुन रही है तो वो कॉल करे, और वही वाला ट्रैक तुमने वो नूरजहां वाला वो ट्रैक प्रिपेयर करना और मुझे सुनाना है अभी, कॉल करना मुझे, ठीक है ना? 042 वैसे तुम्हें नंबर का पता ही है। हाँ, ए आर नासिर।
3: अच्छा, एक माइक इनको भी जरा दे दें भाई।
0: हाँ हाँ, ये माइक है।
3: नहीं नहीं,
1: ये पकड़, ठीक है आप करें। अच्छा, तो बहुत ऐसा आपने कलाम अब कह दिया जिसको हार लगाते हुए भी हम कान पकड़ते हैं, ऐसा ही कलाम है उनके अंदाजे करम। चले
0: थोड़ा सा मैं तुम्हें ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ना मेहदी हसन को मतलब कि कलाम किसी ने वो गाया तो वो इतना सुर में नहीं था, तो वो कहने लगे लाइव ही कि यार तू वैसे वैसे की कमाल कीता कि तू मेहंदी हसन हाथ पाया, हम जी वो भी उत्तों तेन हाथ पा लवे ना। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि तुम आज वो सुना दो, मेरा बहुत पसंदीदा।
5: मुझे आपकी बात से एक बात याद है, वो एक आशिक ना अपनी सहेली को खत लिखता था खून से, खून उसके अब्बू से भी ब्लड ग्रुप मैच कर, उन्होंने भी बोतलां देनी पी।
0: जो आर्टिस्ट होता है ना वो जहनी तौर पर बहुत मजाइया होता
1: है, होता है।
0: मैं चाहे छुरियां भी बजी ना आके इतने हंसी
1: हंसना है, काम के वक्त वो बिल्कुल इजी हो जाते हैं क्योंकि उनका काम ही आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट उनका वो होता है। तो शुरू करें फिर, चले।
3: नी सा सा नी रे नी सा सा धानी नी मापा धानी सा मापा धानी सा मापा धानी सा।

0: मेरे ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से भाई हैं, ये मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि रहमान भाई इसको लेके जाना है प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे, हमने बात करनी है टॉपिक के ऊपर आपके साथ। तो टॉपिक के ऊपर अगर कोई बात करना चाहे तो रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट काम है।
1: बिल्कुल,
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना, दिल की सारी बातें बयान कर देना। कोई एक ख्याल, कोई एक एहसास अगर दिल के अंदर जन्म लिया है, उनको अल्फाज पहना देना, अल्फाज की जवानी, अपने अंदर का गुबार निकाल देना, ये मेरा बहुत फेवरेट काम है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अहमद, उस दिन भी हमारी बहुत सारी इस तरह की बातें हुई। बहरहाल, अभी मैंने आप लोगों को ना एक टास्क दिया था, मुझे बताएं कि इस वक्त आप सब ने अलग अलग टॉपिक डिसाइड करके तजवीज़ करना है। मुझे बताना है कि मेरा ये टॉपिक है रहमान भाई, आज थोड़ा सा हम उस पर सारे मिलके बात करेंगे, फिर उसका जो टॉपिक है उस पर मिलके बात करेंगे थोड़ी सी। इस तरह से क्या है कि थोड़ा सा ना आज डिफरेंट तरह का एक माहौल होगा। हम कॉल्स नहीं ले रहे, कॉल्स वो ले रहा है हम कॉल्स नहीं ले रहे, तो हम ना मैं चाहता हूं कि सुनने वाले प्लीज, अगर आप ये सोचते हैं कि यार हमें कॉल पे नहीं लिया, तो अभी पिछले प्रोग्राम में बहुत सारी कॉल्स पे भी आपको शामिल किया, बातें की आपसे, और मेरा तो वैसे ही बहुत बदनाम हूं मैं कि मैं लाइव कॉल्स नहीं लेता।
1: अच्छा,
0: मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि बीच में आकर बाज़ोकात जिस नहज पे, जिस आसमान पे आप रहते हैं या बात कर रहे होते हैं, अचानक आके कोई गिरा जाता है ये कह करके एक ट्रैक तो प्ले कर दे मेरे पसंद का। वो तो आप डिजिटल मीडियम पे सुन भी सकते हैं, कोई भी ट्रैक आपकी एक्सेस में है, यूट्यूब भी है और बहुत सारे मीडियम्स हैं, आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई थोड़ी देर के लिए बात हो रही है तो वो बात कर लो यार, मैं तो उससे बात करने के लिए आया हूँ। बाहर तो लोग बात करने के पैसे देते हैं कि यार हमारी बात सुन लो प्लीज, हमारे अंदर ये गम जो है ना वो थेरेपिस्ट को कि यार ये प्लीज ये सुन लो मेरी बात, और मुझे इसमें से ना एक चीज निकाल कर, न्यूट्रल होकर निकाल कर दे दो कि मेरा ये मामला कैसे हल हो जाए। चलो ठहरो, तुम कुछ ना निकाल कर दो, तुम मेरा कोई हल ना निकालो, बस मेरी बात सुन लो, ये लो पैसे ले लो, कितने हजार डॉलर लेने हैं, कितने कितने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे तो मैं मुफ्त में बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, है ना। तो बाय द वे,
2: मेरा नाम शहीद है, एंड अगर आपने कॉल करनी है तो मैं फेल ले लूंगा।
0: अच्छा, ये है शहीद, ये कह रहा है कि जी,
3: काफी देर से शहीद बता रहे हैं अपना नाम, आपको पता चल गया सामीन को आपका नाम शहीद है,
2: पहली दफा बताया मैंने,
3: नहीं पिछले शो में भी आप,
0: मैं बहुत शहीद शहीद करता हूँ, लोग भी कहते हैं शहीद क्यों कर रहा है
3: सर, आप बता ही दें फिर क्यों बोलते हैं आप शहीद का इतना नाम।
0: यार मुझे बहुत प्यारा लगता है और मुझे बाकी लोगों से डर लगता है, वो मुझे मारे ना इसको मैं कह भी देता हूँ कुछ भी,
2: इसको मैं मारूंगा,
0: इसको मैं मारूंगा,
3: आपने जो है ना योना बदल दिया है शो का, एक डायरेक्शन बदल दिया है, और बीइंग अ यंगस्टर वी आर फीलिंग मोर लाइव,
0: बाकी में
3: हकीकत बात है,
0: ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मैं ना
3: कि शायद
0: ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मैच नहीं हो पा रही, शायद वो ना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट तरह की बातें हो जाती है ना, बहुत गहरी भी हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सोचने वाला इंसान होता है, किसी ने ये कहा था, मैं अपने बारे में नहीं ये कह रहा, किसी ने ये कहा था कि जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना वो बहुत ज्यादा जहीन भी होते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो जहीन होता है वो आधा डिप्रेशन में जरूर होता है।
3: हम टर्म यूज करते हैं इसके लिए, ओवरथिंकर्स।
0: यस
1: सर, इसके रिलेटेड ही मेरा टॉपिक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा।
0: चलो बताओ, पहले पहले तुम बताओ या तुम बताओगे
1: रहमान?
0: चलो
3: आप बताएं,
0: शुरू पहले पहले अहमद बिलाल से हम पूछते हैं
1: सर, मेरा टॉपिक
0: अपकमिंग आरजे, गले में खूबसूरत सी एक चेन, और तुमने भी पहनी हुई है यार, नासिर ने भी पहनी है, और क्या खूबसूरत सा ऊपर वाला बटन जो है ना वो खुला हुआ है और मुझे बहुत प्यारा लगा। ओ नहीं,
1: मैं नीचे वाला खोल,
0: थल्ले वाला भी खोल रहा है, मैं वो चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ अहमद बिलाल, क्या है तुम्हारा टॉपिक, क्या है तुम्हारे जहन में?
1: सर टॉपिक बेसिकली, जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमें वहां से ऑटोमेटिकली टॉपिक मिल जाता है, तो उसको ज्यादा सोचने का हमारे पास वो होता ही नहीं है टाइम। तो मैंने अभी बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि क्या हर मुस्कुराने वाला इंसान खुश होता है?
0: हाँ हाँ हाँ,
3: क्या बात करते हैं,
0: क्या हर मुस्कुराने वाला इंसान खुश वाकई में खुश होता है अंदर से,
3: क्या वाकई से उसका वाकई में उसका दिल भी मुस्कुरा रहा होता है,
0: उसका दिल भी क्या वाकई में मुस्कुरा रहा होता है? ओ माय गॉड। तो सबसे पहले हम ना 1:58, हम 3-4 मिनट इसके ऊपर डिस्कशन
3: करते हैं।
0: तो तुम्हारा इसके बारे में एआर नासिर क्या ख्याल है कि क्या वाकई में हर मुस्कुराहट के पीछे जो दिल है वो भी खुश होता है?
3: बहुत डिफरेंट टॉपिक है और बहुत रिलेटेबल है।
0: हाँ
3: हम हंस रहे होते हैं अपने दोस्तों के अंदर बैठ के, और जैसे ही वापसी के रास्ते पे चलते हैं तो यार दिल फिर से हमारा बहुत टूट जाता
0: है, वीरान हो जाता
3: है। ये ऐसे ही है कि लोगों के अंदर हम अलाइव फील करते हैं लेकिन असल में हम खोखले हो चुके हैं। और आप एक हकीकत बात बताऊंगा, जो बंदा आपको फील हो रहा हो ना ज्यादा हंस रहा है, अंदर से वो उतनी खाली है,
1: टूटा होता है।
0: वाह वाह वाह,
3: ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है।
0: अच्छा, ओ माई गॉड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अहमद बिलाल, बाज़ औक़ात इंसान अपने दोस्तों में हंस भी रहा हो चाहे, लेकिन वो बहुत वीरान होता है उसी जगह पे।
3: हकीकत बात है।
4: सर, लेकिन आपका एक ऐसा दोस्त होता है
0: जिसको
4: आपकी कैफियत का अंदाजा होता है।
0: हाँ, जरूर होता है,
3: जो आपको समझता है।
0: अगर वो, ये बहुत बड़ा आपके लिए इनायत हो सकती है रब की, अगर वो उस महफिल में बैठा भी हुआ।
4: सर, वो आपको हंसता देखेगा ना ज्यादा, तो आपको पर्सनली आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्या
0: बात
3: ठीक है। ज्यादा भी आप हंस रहे हो या कम भी हंस रहे हो, ऑकवर्ड फील वो आपको साइड पे करके चक्कर किया बता देगा,
0: बता दे मुझे।
4: बिल्कुल
3: हकीकत,
0: वहां पे दिल ना जो एकदम से टूटा हुआ होता है ना, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार एक इंसान का एहसास यहाँ पे मेरे लिए मौजूद है।
3: सर, एक और बात बात से बात निकलती है, जो सामाइन भी हमारे हैं उनमें भी जिनका वो एक साथी है, जिनका एक वो दोस्त है, जो उनको सुनने के लिए बैठा है, जो उनको बताने के लिए बैठा है, ये खुशकिस्मती है,
0: बहुत बड़ी खुशकिस्मती,
4: बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी।
0: अगर किसी के पास कोई एक इंसान ऐसा मौजूद है, अहमद बिलाल तुम्हारे लिए मैं हूँ, ठीक है ना, याद रखना। तुम्हें अगर कुछ भी कहना हो ना, और ये चाह रहे हो कि इसके बारे में जो मैं कह रहा हूं कोई राय कायम ना करे, बस सुन ले, और उसके बाद ना वो मुझे या तो मेरे साथ बात कर ले, या वो प्लीज मुझे कुछ देर के लिए ना काम डाउन कर दे, तो मैं मौजूद रहूंगा।
4: चार्ज तो
0: नहीं, याद रखना ये बात।
1: सर, सजेशंस बड़े जरूरी होते हैं, सजेशन दे देंगे वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
0: बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब तुम्हारे इसी टॉपिक के हवाले से तुम क्या कहना चाहते हो?
1: सर, मुझे लगता है कि अभी जैसे हम थोड़ा सा इसको ना पीछे लेके चलते हैं, अभी पिज्जा पार्टी कर रहे थे,
0: हाँ बिल्कुल,
1: ऐसे ही एक गैदरिंग हो, पिज्जा पार्टी हो, सब खुश हो, उसके दौरान आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाए, वो बंदा ना फिर वो मैसेज देख के उसे कैफियत में चला जाता है कि यार यहाँ मैं खुश हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, इससे मैं क्या बात करूँ। ये चीज़ें बहुत मुझे लगता है कि होती हैं जिंदगी में। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए सबके कोई ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आपका भी होगा, मेरा भी है, रहमान का भी है, शहीर का भी है, सबका होता है। तो मैं, मुझे अभी एक ऐसा ऐसे मैसेज आया ना, तो मैंने वो देखा, तो फिर मेरे दिमाग में आ गया टॉपिक, मैंने कहा यार इसके जरा पूछते हैं,
3: तो हमें बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि इतना भी जो मैसेज आपको आया था वो ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग नहीं था।
1: नहीं नहीं, बस ठीक है, क्या बताऊं आपको।
3: चलिए, बात छेड़ दी है तो अब तकमील तक पहुंचाई
0: बात। उसे कहना कि सुन लो, बेशक 101 पे रहमान अनवर के साथ मैं बात कर रहा हूँ,
3: अधूरी बातें
0: तो अधूरी बातें हैं, और अधूरी बातों का मतलब होता है बहुत मुकम्मल से भी ज्यादा।
3: क्या बात है,
0: जो कीमती होती हैं वो अधूरी बातें। अच्छा,
3: अधूरी बात।
0: तुमने जो मुंह बनाया, तुमसे मैंने पूछना है कि इस टॉपिक के हवाले से
3: पहले ये बताओ इसका मफहूम क्या था।
1: क्या
0: अच्छा, नहीं वो ना, वो ना एक तुम्हें भी कोई मैसेज
4: नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे आए
3: वो इंतजार कर रहा है, मेरी बारी आई माइक पे।
0: तुम्हें पता क्या मैसेज आता है, कुछ देर के लिए तो बात कर लो यार, कभी जिम कभी।
3: सर, मैं बताता हूँ क्या मैसेज आता है इसका, इसको मैसेज आता है आपको लकी ड्रॉ निकले इतने इनाम का,
4: लिंक पे क्लिक करें।
3: हाँ, लिंक पे क्लिक करें, ठीक है।
0: तो और मुझे लगता है तुम लिंक पे जरूर क्लिक करते हो यार। और उसके लिए ना तुम कुछ देर के लिए सोचते हो कि क्या अभी क्लिक करूं यार। अच्छा, तुम क्या कहोगे इस टॉपिक के बारे में कि बाज़ औक़ात हम भीड़ में बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, अपने दोस्तों के अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में अंदर से खुश होते हैं? हमारा
4: सर, इस टॉपिक को अगर मैं रिलेट करूँ ना, तो इंसान अभी तो दोस्तों की गैदरिंग की बात हो रही है ना, इवन दो कि अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी इंसान होता है, लेकिन उस तरह से खुल नहीं पाता कि यार क्या सोचेंगे, या मैं एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन फैमिली में देखा जाता हूँ, तो अगर मैं ही लोगों में इस तरह से अफसुरदा बैठना शुरू कर दूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इंसान खुल नहीं पाता,
0: खुल नहीं पाता।
4: तो एट द एंड जो है ना, आपके पास या तो आपका करीबी ऐसे कोई कजन हो सकता है, या कोई आपका दोस्त हो सकता है कि जिसके आप जो है ना खुल के बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप दिल हल्का कर सकते हैं उनके साथ, ये ऑप्शन बचता है आपके पास एंड पे।
0: तो तुम्हारे पास है कोई ऐसा इंसान?
4: सर है, मेरा कजन है,
0: उसके साथ तुम जो घर में अपनी फैमिली के सामने नहीं कह पाते, या सबके सामने नहीं कह पाते, वो उसके सामने कह देते हो?
4: सर अराउंड दो मंथ में एक बार।
0: दो मंथ में एक बार,
4: एक बार।
3: इस बात की समझ वजाहत करें थोड़ी सी।
0: यानी दो मंथ में एक बार तुम जाके जरूर मिलते हो उससे?
4: बिल्कुल।
0: यानी मुलाकात ही दो मंथ के बाद होती है?
4: बिल्कुल ऐसे ही।
3: अच्छा,
0: और फिर वो सारी बातें तुम उससे कह देते हो?
4: सर वो फिर हम रात को जब चाय पीते हैं बैठ के, तो फिर जो है ना,
3: तो फिर
4: दुखी दास्तान
3: पता नहीं चलता कब शुरू हो जाता है।
0: मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जो इस बंदे का एक क्रेज और है ना, इस तरह का जो अंदाज है इसका, नहीं होगा इसके पास सवाल का इसका जवाब, क्योंकि नहीं बीता उस पे यार, क्यों उसने प्रेशर डालना है नहीं बीता उस पे, वो बेचारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं करूंगा इस पे बात।
4: सोचिए कि दो महीने में एक बार
0: क्या ही बात हो जाती होगी कि यार उधर से मैं आया हल्का सा ऐसे, उसने रेडी ऐसे बिल्कुल अभी, मतलब मैंने देखा अभी दो, मतलब मोटर बाइक पे जा रहे हैं, एक मियां बीवी, बच्चा एक आगे बैठा है एक पीछे बैठा है, ऐसे बस रेडी ऐसे ऐसे हुई है, उनके पास से ऐसे गुजर गए क्या क्या सोच रहे हैं तुम लोग के, मतलब लगेंगे कोई, मतलब नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा फोन आ रहा है,
3: थोड़ा बदलते हैं।
0: अच्छा शहीर, हाँ
3: पांच, इसके पांच मिनट पूरे हो गए सर इस टॉपिक के।
0: अरे हाँ, लेकिन एक एक
3: चले चले उससे ले लें,
0: हो गई बात उसकी, ठीक है ये मैंने अभी मैंने ये करना था वैसे कि क्या कहना चाहेंगे आप। हाँ ये भी आपने भी बात ठीक की है, वाह वाह, अनजाना जो सफर तुमने तय किया है
4: आपने बात अच्छा, ना
0: करके बिलाल तुम्हारी बात लेकिन फाइनल थी यार नासिर, ठीक है तुम्हारी भी बात थी, ये ऐसे मैंने कर देना था। हाँ शहीर क्या कहना चाह रहे हो? अरे अरे
3: क्या बात है,
0: अरे अरे अरे अरे अब मैं उठ जाऊं आरजे डॉक्स, आरजे डॉक्स, वो गाना किधर है, वो गाना किधर है, आरजे डॉक्स, आरजे डॉक्स हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो शहीर इस हवाले से कि बाज़ोकात अगर इंसान भीड़ में हो और वो बहुत मुस्कुरा रहा हो, क्या वो अंदर से दिल से भी खुश होता है?
2: रहमान भाई आई थिंक कि ये
0: होटल मुंह करके गल कर उन्हें कुछ
1: मेरा मेरा टोक सर इसे बोले स्टोरी नहीं बनानी।
0: हाँ
1: जो जो अगर
0: है बात तो फिर वो बताओ। ये वैसे तुम लोग आपस में हो ना, तो ये क्या बाकी स्टोरियां बनाता है? बाइक करीब करो आरजे डॉक्स के, बात आई है
2: हमें सही कह रहे हैं,
0: चलती हुई बात पाक होती है।
2: है कहानी बाज,
0: कहानी बाज
2: बहुत बड़ा कहानी,
0: फिर यकीन मनो ये कर सकता प्रोग्राम
2: कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, कुछ अल्फाज है
0: और भी बहुत सही चीजें कर सकता,
2: छोड़ दी है मैंने, छोड़ दी है मैंने,
0: नहीं यार ना छोड़ना यार,
2: पहले
0: जो मैंने सोचा वो ना छोड़
2: देना। लाहौर का स्टूडियो सबसे प्यारा स्टूडियो है।
0: हाँ
2: ये तो मैंने बोला है हर जगह,
0: फिर बोलो
2: लाहौर का स्टूडियो सबसे प्यारा स्टूडियो।
0: अटक क्यों रहे हो इस बात?
1: सर ये बात दिल से नहीं निकली,
3: खुल के नहीं बात कर रहे,
1: दिल से बात नहीं निकली।
0: अच्छा लेकिन तुमने उसका जवाब दिल से देना है, बताओ
1: प्लीज।
2: मेरे साथ वैसे ऐसा कोई भी सिचुएशन हुई नहीं है।
0: अच्छा फिर ये
2: मैं रहने ही देता हूं।
0: अच्छा फिर तुम्हारा टॉपिक क्या है?
1: मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, अभी दोस्तों की गैदरिंग की बात हो रही थी, तो हम किसी ना किसी दोस्त से अपना कुछ ना कुछ शेयर कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सबसे पहले दोस्त बनता है वो आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके माँ बाप बनते हैं। तो मैं बेसिकली मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सबसे पहले उनसे शेयर करता हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छा सजेशन भी मिल जाता है, मेरी रहनुमाई हो जाती है। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, दो दोस्त हैं जिनसे मैं वो चीज डिस्कस
0: कर सकता हूँ।
5: हाँ। जी मैं तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए अब्बा को बताओ,
0: ये पास करो ना।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं?
0: अच्छा वाकई में ऐसा है, इतना फ्री हैंड है, दिया हुआ है कि
1: अल्हम्दुलिल्लाह
2: जाके कहोगे यार अब्बा बात सुने किस तरह, मतलब
1: मैंने मैंने सर मैं बताता हूं ना,
0: आई एम रियली सॉरी, एक जुगत आई फाइनल लड़ी से कमरे दे विच ना वो मतलब साउंड प्रूफिंग करवा रहा सीगा, ते लोकां ने पुछया यार क्यों करवा रहे, कहंदा वो अब्बू नूं कदी कदी कुटना भी हुंदा यार आवाज़ां बाहर जा रहीआं वा यार, आई एम रियली सॉरी यार। यार
1: सर मैं अभी सर ने बोला ना कि मैं कैसे बताऊंगा
0: यार। अच्छा ठीक है जी,
2: गलत बात
0: यार, नहीं ऐसा, ये सिर्फ
2: हज़फ करें,
0: ये सिर्फ एक बात है। अच्छा माफी मांगता हूँ, ठीक है। हाँ क्या कहना?
1: मैं सर सबसे पहले उसकी फोटो निकालूंगा।
0: अरे
1: वो मैं अपने
0: क्या क्या सवाल क्या पूछा था इन्होंने भला,
1: लड़ने पूछे
0: कि लड़की का अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो,
1: अब्बू को कैसे बताऊंगा?
0: हाँ
1: तो उसका जवाब ये है सर कि मैं उसकी तस्वीर निकालूंगा, अपने अब्बू को दिखाऊंगा और बोलूंगा ए ये
2: पसंद है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: उसने डॉग्स फाइनल कह दिया कि यही
1: यही है
0: बस
1: बस, ये सिर्फ इतनी बात है
2: बस
1: बस।
0: उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा। मतलब वो बस यहां तक ही कह सकता है, उससे आगे तो बोलने के लिए कोई मतलब इंसान को होशो हवास चाहिए होते हैं, कुछ चीजें चाहिए होती हैं, मतलब वो उसका जमाने में मतलब जिंदा होना भी जरूरी है बात करने। अचानक से कुछ पेड़ आ सकती है ऐसे, ऐसे तरीके से आ सकती
2: है। तो सिचुएशन बनी ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक जिस तरह अगर जिस तरह शहीर करता है, मुझे लगता है वो
0: दिख रहा है सारा पता है।
2: He would be showing the picture and asking, अबा आपको पसंद है?
0: चल मजाक ना कर, चल अच्छा।
2: मैं कह रहा हूँ यार मेरी उम्र नहीं, कहा नहीं मेरी है।
4: उन्होंने कह रहा जी मुझे पसंद
2: है, आपको बहू के तौर पे पसंद।
0: वो अब्बा जी आगे से पूछ ले,
4: हुण तुसी मेरा दिल खराब कर।
0: यार पहले ही आपने ये कह दिया। हाँ, अब गल ज्यादा उधर जा रहा। अच्छा
3: बात उठा के चली जाएगी तो अभी इधर को स्टॉप लगाएं।
0: अच्छा नासिर का टॉपिक आप पहले डिस्कस कर लें, क्या तुम्हारे दिन में क्या ख्याल आया?
3: मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो
0: चलो ठीक है
3: रोशनी डाल लें।
0: अहमद बट आपके जहन में क्या टॉपिक आया, क्या होना चाहिए?
2: यार पहले मैं एक बात ऐड करूं, मतलब
0: हाँ,
2: I remember the day when these guys came for the internship training program और मेरा हल्का इंटरेक्शन हुआ ना इनके साथ। नासिर तो खैर था ही ना, मतलब अच्छा गाता था, अच्छा गाया।
0: अभी सर जो महफिल लगी
2: खुद इसने वो एक पोजीशन एक्वायर कर ली ना।
0: और हसीब ने गाया, हसीब को सुना आपने?
2: हाँ हसीब को भी।
0: ओह माय गॉड,
2: I was like के हाँ यार है पोटेंशियल। फिर इन दोनों से जब मेरी मुलाकात हुई, शहीर तो खैर पुराना इससे तारुफ था ही। हाँ। मैं कहा शोखा जे मुंडा किथे आ गया।
3: बट टू बी ऑनेस्ट सेशन चल रहा है
0: ये। टू बी ऑनेस्ट है, तेनू कसम लगे सच दसी, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के
2: साथ। एज अ ट्रेनर मैं कहा यार शोखा जे
0: किथे आ गया यार,
2: वो फोन ते भी जुड़ जांदा सी मेरे नाल और वो फोन ते भी कहानी पा रहा है, यू नो सर आई हैव बीन लिसनिंग टू एफएमएन, आई हैव बीन गोइंग टू एफएमएन। मैं कह रहा यार ये केड़ा अंग्रेज मेनू चमड़ गया भाई। अब ऐसे मुझे
0: कि जेडी अंग्रेजी सुन के मेरी भी खराब हो।
2: मैसेंजर पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कह रहा है फोन नंबर एंड दिस एंड दैट। मैं कहा अच्छा यार तू ले ले भाई, इसे मैंने नंबर दे दिया। फिर मैं आपको पॉडकास्ट में बुलाना चाहता हूँ। मैं कहा अभी ये मुझे उठा रहा है ना, अभी उठा रहा है। ठीक है उठा ले तू, कोई नहीं। एफ सी कॉलेज में मुझे भी पता है भाई, एफ सी कॉलेज में तुम नहीं करवा सकते ना।
0: अरे हाँ
2: एफ सी कॉलेज में ऐसे नहीं होता, वहाँ पे सोसाइटी है बकायदा, एक परमिशन लेके हर चीज करनी पड़ती है। आई नो अबाउट एफ सी कॉलेज, लेकिन मैं का मुंडा चुक रहा चुकन दे।
0: ठीक है मतलब मेनू तो मजा आ रहा, चलो ठीक है
2: चुक रहा। लेकिन फिर जब ये इंटर्नशिप में आया और फिर आके इसने वहीं से बेसिकली एंड एक्चुअली से जब बोलना शुरू किया ना।
0: अच्छा ये बच्चे भी उस दिन कह रहे थे बेसिकली पे हंस रहे थे। अच्छा ये बेसिकली और एक्चुअली
4: कल की बात है,
0: कल की बात है,
3: मशहूर कॉल है,
0: कल है ना, कल हंस रहे थे।
2: ये अकवाल है इनके हजूर जो शुरू ही
0: अकवाल है जरी, अकवाल है शहीर।
2: और फिर
0: ऑब्वियसली वैसे ऐसे उन्हें पॉपुलर कर रहे हैं, बहुत गल्ला उन्हें करके।
2: हाँ तो यही कर रहे हैं ना उसको थोड़ा सा। फिर मैं कह यार अब ये सारी इंटर्नशिप में ये बंदा तंग भी करेगा। फिर जो सेशन मुकना ना इन्हें आ जाना सद भाई। हाँ जी
0: भाई कहता था इतना करीबी ताल्लुक डायरेक्टली और लगा।
2: कभी ये बात कभी वो बात, मैं कह यार इन्हें बहुत तंग करना। मैं भी पता की करना, मैं मोबाइल से लगा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ
0: लेकिन लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं आ रही कि यार जो आई कॉन्टेक्ट नहीं ना हो रहा ज्यादा तो नहीं करनी गल।
4: फिर परेशान हो गया मुंडा।
2: पॉइंट
0: नहीं नहीं प्यारा मुंडा,
2: पॉइंट इज
0: हाँ
2: कंसिस्टेंट है।
0: हाँ
2: यस इतना बेयर करना, इतना प्रेशर लेना, इसे दो तीन प्रोग्राम्स में बकायदा रगड़ दिया मैंने ना।
0: वाह वाह ये उसकी उसकी तसीह की जा रही है।
2: और फिर आके बैठा होता ना, इट मींस के आप सीखना चाह रहे हैं,
0: सीखना चाह रहे हैं आप। आपको उस चीज से मोहब्बत है, आपको उस चीज से ना एक खुशी मिलती है, फिर भी आप पहुंचते हैं।
2: मतलब
0: लगाओ बहुत ज्यादा है।
2: इट शोज के हाउ मच यू वांट टू लर्न।
0: यस
2: तो इसी में फिर बंदा सीखने के आगे मंजिलें तय करता है। और जहां रही जबान में लुकनत की बात, फितरी है,
0: फितरी हो जाती है ऐसी।
2: उसका तो कोई मसला ही कोई नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसका कोई फर्क नहीं है। गुफ्तगू आपकी मानी
6: معنی خیز ہونے چاہیے, اس وہ میٹر کرتی ہے.
1: بالکل بالکل سر.
6: باقی یہ جو دو لڑکے ہیں ان دو سے میرا تعارف ہوا, میں کہا یہ تم میری طرح کے لفنٹا رہے ہیں,
0: اپنا اپنا سا احساس محسوس ہوا کہ یار
6: میں نے پوچھا کہ
0: میں جتنا جینین ہوں یہ بھی اتنے ہی جینین ہیں, میں جتنا سنسیئر ہوں یہ بھی اتنے ہی سنسیئر.
6: نہیں آپ اچھے الفاظ استعمال کر. اچھا میں کہا جنہ میں بگڑے سی انہیں ہی بگڑے نے استاد جی. تہذیب کے دائرے میں رہ کے جتنی خرافاتی کاروائیاں کر سکتا تھا یہ بھی اسی طرح کے دیکھنے والا جب ملتا ہے تو سمجھتا ہے بہت تہذیب کے دائرے میں رہنے والے ہیں, لیکن انہیں کا پتا یہ ان کی خلوتیں کیسی ہوں گی,
0: یعنی کہ میں بتا دیتا ہوں تنہائیاں کیسی ہوں گی. نہیں مجھے لگتا ہے بڑی خوبصورت ہوں,
6: لیکن مطلب پوٹینشیل.
0: یس
6: اسٹل اگین پوٹینشیل. ابھی بھی اگر وہ میں انہیں سنوں نا جو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے, ایون ناصر بھی بیٹھا یہ بھی بیٹھے, سو مینی مسٹیکس بات بے ربط ہو جاتی ہے, بے ہنگم ہو جائے گی, کبھی ادھر ادھر نکل جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ربط ابھی تک فیل کرتا ہوں نہیں آ رہا, لیکن آئی نو آئے گا, مجھے پتا ہے آ جائے گا. اسی لیے میں کہ رحمان کے ساتھ بٹھائیں, ضیاء کے ساتھ بٹھائیں, فرحان کے ساتھ بٹھائیں, اس کے ساتھ بٹھائیں, ان انٹینشنلی ایک لرننگ پروسیس چل رہا ہے.
0: بالکل ایسے ہی
6: انہیں بھی نہیں پتا.
0: بالکل ایسے ہی ذہنی طور پر آپ کی
6: چل رہا ہے, چل رہا ہے, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا.
0: یس
6: یہ چل رہا ہے, کیونکہ میرا سننے والوں سے بھی یہی گزارش ہوتی ہے اور بارہا یہ بھی کہا کہ اگر آج ہم انہیں جگہ نہیں دیں گے, ہم انہیں نہیں بٹھائیں گے, تو پھر یہ کہاں سے سیکھیں گے؟
0: بالکل ایسے
6: ہم کوئی سیکھے سکھائے تو نہیں آئے تھے نا.
0: بالکل ایسے ہی
6: ہمیں بھی بڑی بڑی باتیں سننے کو ملی, بہت کچھ بڑا رگڑا کھانا پڑا, پھر اس کے بعد اگر تھوڑی سی گفتگو آج کرنے لگے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے. تو ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے ابھی سے, دے آر ٹو ینگ, ابھی یہ کر جائیں گے آگے تو پھر اسکائی از دی لمٹ.
0: میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر جو ٹاپکس ہیں نا وہ ان کی جنریشن کے ساتھ ساتھ اتنے میچڈ ہیں.
6: کیونکہ وہ اس جنریشن کے, مجھے لگتا ہے ہم اپنی جنریشن کی باتیں کرتے ہیں, آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہم اکثر.
0: آپ تو کہتے تھے میرے بارے میں یہ بات کہ رحمان میرا مزاج تمہارے ساتھ میچ کرتا
6: ہے,
0: مجھے تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہوئے رونا آ جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو اندر والی سائڈ پہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں, دل کی جانب سفر کرتے ہیں, اتنی باتیں آپ میرے بارے میں کہتے تھے.
6: آپ کی اور میری گفتگو میچ کرتی ہے, جنریشن نہیں کرتی.
0: دوستو آج میں نا علل اعلان لائیو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واقعی میں تھوڑا سا ہیلدی ہوں بس.
1: سر آپ خوبصورت ہیں.
0: دیکھیں آپ کے جو دوست ہیں ان میں سے ایک نے یہ کہہ دیا آپ خوبصورت ہیں. یار احمد تم بھی کچھ کہنا.
3: بالکل سر آپ کی خوبصورتی ہے, بالکل نو ڈاؤٹ,
0: لیکن تم ہلکا سا بیچ میں اٹکن سی تھوڑی سی,
3: کیونکہ
0: بالکل ہے سر خوبصورتی ایسی کر کے تم نے تھوڑا سا مطلب
6: خوبصورت سے خوبصورت
0: تم نے مطلب کہ الفاظ میں تھوڑا سا مطلب کہ رد و بدل کیا ہے تم نے,
3: بدل نہیں میں نے
0: کیا کی جگہ فیڈ لگایا تم نے.
1: سر یہ شہیر آپ کو صحیح بتائے گا,
0: بے کی جگہ فیک ایسے لگا.
1: نہیں نہیں نہیں کہ آپ خوبصورت ہیں.
0: ہاں نہیں شہیر دیکھو یہ بات بالکل, میں اس وقت نا میں بہت سیریس ہوں, میں واقعی سیریس ہوں اس ٹائم. کیسا لگتا ہوں میں تمہیں یار؟ میں
3: پیچھے لے سر.
1: یہ تو وہ بات ہوگی, ابو
3: کیسے بتاؤ شہیر کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ سر
7: میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا
3: ظاہراً کیسے لگتے ہیں
0: کر کے شیر بلایا ہوں دا. کیا
7: میں نے آپ کو بتایا اچھے لگتے؟
0: ارے
3: کیا بات کر رہے
0: ہیں سر, اس میں شیر بات ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے تھے ان بچوں کے بیچ میں. اگر آپ ان کے ساتھ راک سٹار سے لگ رہے ہیں.
6: نہیں نہیں ہے,
0: یہ ذرا دینا مائک, اچھا لگتا ہے. یہ ذرا جگل بندی یہاں سے بنتی شروع ہوتی ہے, یہ ذرا سیکھنا تم لوگ ہیں.
6: لیبنیز ہیں آپ؟ نہیں لیبینز ہیں آپ. لیبین ہے نا,
0: لبنیز, ساؤتھ افریقہ, نائجیریا, یوگنڈا, مطلب ہر وہ ملک جو مطلب ان میں اگر میں چلا جاؤں تو وہ مجھے چٹا چٹا کہہ کے چھیڑیں گے. نہیں مطلب ایسے ملکوں میں وہ ہی مجھے کہیں گے کہ مطلب میری فیملی کا حصہ بننا, اگر آپ بننا چاہو ہمارے कि प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, ये मैंने ठुकरा दी ये सारी चीजें। मैं यहाँ पे मैं बानी हूँ पाकिस्तान का, ठीक है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, चाहे वो मुझे जितना मर्जी एडमायर करें, मेरे बारे में जितनी मर्जी खूबसूरतियों की तारीफ करें। वैसे आपको पता है सबसे ज्यादा खूबसूरती काले रंग में होती है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन।
6: आप काले नहीं है ना?
0: नहीं है। कुछ मतलब दरमियाना सा हूं, कुछ ऐसा हूं कि मतलब समझ नहीं पा रहा कोई कि कैसा हूं।
6: आप काले नहीं है, आप शदीद गंदमी है।
0: शदीद गंदमी। अच्छा शुक्रान। या ये दोस्तों ये गंदमी मतलब कि मीम का लफ्ज बीच में इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि गंदम है उस तरह का मेरा कलर। यार ये तो बहुत प्यारा होता है यार।
6: नहीं अच्छा लगता है। ओ मेरी दादी कहती थी।
0: क्या कहती थी?
6: आपने बुरा नहीं
0: उनको भी पता है मेरे बारे में।
6: दादी मेरी, आप खैर आप तो यहाँ के ब्रीड नहीं है ना, आप तो माइग्रेटेड है आप लोग सारे। वो कहती थी हाँ हाँ ये मतलब माइग्रेटेड है ना, ये कश्मीरी है ना, ये सारे तो पहाड़ी कश्मीरी।
1: नहीं नहीं मैं नहीं हूँ।
6: तो दादी मेरी कहती
0: तुम तो नहीं हो ना?
1: नहीं
0: तुम भी नहीं। अच्छा ठीक।
6: अब पंजाबी जड़े होते हैं ना दादी, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं जस्ट आई एम शेयरिंग। इस पर ये ना हो कोई के बॉडी शेमिंग कलर शेमिंग।
0: नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने कर
6: नहीं ऐसा।
0: अच्छा
6: एकदम मर्द गोरा चिट्टा
0: नहीं अच्छा लगता यार।
1: अरे यार दिल खुश कर देता।
6: सिर्फ पंजाबियों के बारे में थी, लिबियंस के बारे में नहीं।
0: देखिए मेरी बात सुनो, मेरे जब दाद के पता आपको मियां वाली ले चलिए तेनू नाल, वहां के हैं वो, और मतलब के वालिद पंजाबी लोग हैं, वालिद से चलती हैं ये चीजें यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे मुआशरे का है, तो वालिद से ठीक है मैं पंजाबी हूँ, मेरे ना पंजाबी च गल कर लो तुसी। हाँ ऐसा नहीं मेरे बारे में कभी सोचना दोस्तों, ये जितना भी आप लोगों को डिग्रेड मेरे बारे में करने की कोशिश करें, गलत बातें करने की कोशिश करें, मेरी ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश करें।
6: अच्छा, ये
0: तो आप लोगों ने नहीं कैप्चर होना, ठीक है?
6: अच्छा एक और थॉटफुल बात।
0: अच्छा
6: ये चीज जो है ना सिर्फ हाँ। मिलेनियल तक थी वही बेयर करते थे, जेन जी इसको बेयर नहीं करता।
0: अच्छा ये वाली जो चीज है
6: ये जो हम एक दूसरे के साथ कर लेते
0: नहीं,
6: ओए मोटे ओए फलाने ओए ये ओए वो, जन जी नहीं इसे पसंद करते।
1: नहीं करते सर बिल्कुल
6: इस तरह के,
0: बाकी में
6: बॉडी शेमिंग और ये और वो। अच्छा ये चीज मैं इनकी अप्रिशिएट करता हूँ, इसे मैं बुरा नहीं कहता, दिस इज समथिंग गुड।
0: अच्छा
6: और ये होना भी चाहिए, मतलब बचपन में हम सारे कहीं ना कहीं इसी वजह से बुली भी हुए हैं, बुली होते रहे हैं। वो तो एक सर्टन एज के बाद आप बुली नहीं होते ना, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन जन जी बचपन से ही माइंड करते हैं,
0: वो पहले से ही उन्होंने रोम नहीं दिया कि नहीं बस मेरी ये हद है और इस हद से आगे नहीं
6: बढ़ना। आप उसे कह देना मेरा भांजा है ना, मेरे भांजा माशाल्लाह, अब उसने आके रिड्यूस करना शुरू कर दिया, जिम कर रहा प्रॉपर, ताड़े नाल शुरू होया सी पतला हो गया दे तुसी उत्थे ही हो। हाँ वो सही स्मार्ट होता जा रहा है माशाल्लाह। हाइट
0: दोस्तों आप लोग अपकमिंग आरजेस हैं, ये यहाँ पे 25 सितंबर है, ये 25 दिसंबर इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने पहचानना ही नहीं है, आपने कहना अरे छोटू गुगलू
6: चाय तो
0: कैसे हो आप, और रहमान अनवर भाई सॉरी सॉरी सॉरी कैसे हैं आप, खैरियत से? अरे यार ये क्या मतलब बॉडी, शर्म आ जानी है इन सबको।
8: जब आप आते हैं क्या बॉडी है
0: मतलब आप ये कहेंगे कि मतलब ये नहीं कहेंगे क्या बॉडी, कहेंगे क्या बॉडी है यार, क्या बॉडी
1: बिल्कुल
0: है? क्या है यार कुछ तो कर। अच्छा ठीक ये मेरे साथ डायरेक्ट नहीं हो रहा।
1: आप भी देख।
0: अच्छा यार ओ माय गॉड बहुत बहुत मजा आया, 2:22 हो गए सर।
6: अच्छा फिर
0: ले लेंगे चार्ज।
6: कॉल आ रही?
0: हाँ जी कॉल्स नहीं।
6: अच्छा ठीक
0: रहन दीजिए यार,
6: रहन दीजिए।
0: हाँ खत्म करिए।
6: अच्छा क्या कह रहे थे आप?
0: मैं कुछ भी नहीं कह रहा था।
6: आप बात कह रहे थे?
0: मैं तो आपसे बातें करता रहता हूँ, दिल की बातें हैं।
6: मेरा और रहमान का और ज़िया का शो हुआ करता था, कंबाइन शो है।
0: हाँ वन वन वाइब्स
6: के नाम से yes. बड़ा मज़ा आता था, बड़ी थॉटफुल डिस्कशन आप लोगों ने सुनी नहीं, हमने उस पर जिन्नात के मौजू पर डिस्कशन शुरू की, कितनी हमने एपिसोड्स की थी मेरा ख्याल है
0: मुझे लगता है कोई नहीं ज्यादा की।
6: अच्छा
0: ज्यादा की है
6: हमने, 6-7 ही की थी
0: हमने। जन्नत का टॉपिक बाद में सोचा था, उससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स को ले मतलब बहुत सारी बातें कर चुके थे।
6: नहीं वो एक दिन हंसते हंसते आपकी हालत गैर हुई तो फिर मुझे जन्नत का ख्याल आ गया। फिर वहां से मैंने कहा अगर अफरीद को हम हैंडल कर सकते हैं जिन्नात पे भी बात की जा सकती है।
0: अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको अफरीद का पसे मंजर बता दूं पहले ना, जिन्नात में सबसे पावरफुल जो है ना मखलूक उसमें अफरीद है पहले नंबर पे, तो मुझे उससे जोड़ा है, मैं कुछ भी ना हुआ यार। नहीं बहुत मजे की डिस्कशन रही और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से पर थे हम और टाइम ट्रैवल उसके बाद स्टार्ट होने वाला था,
6: बस वो जितना आप उसमें
0: और जो मेरी फैंटेसी है रियल में
6: वो नहीं हुआ क्योंकि आप भी टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन स्लाइस ऑफ टाइम में फिट नहीं थे आ रहे आप।
0: स्लाइस ऑफ टाइम में स्लाइस, ओह माय गॉड क्या बातें,
6: स्लाइस ऑफ टाइम
0: इसने आज मुझे बिल्कुल ही ना अपने आप से बाहर निकाल दिया, इतना खूबसूरत गाया इसने,
6: लगता नहीं है मुझे,
0: नहीं निकाला, नहीं निकाला मैं अभी यहाँ पे एक चाय चाय है ऐसे ही है रजा, चाय पार्टी हो रही है हमारे लिए है। कौन सा सुनना है ट्रैक बताएं, क्योंकि ये जब आप कहते हैं इसका मतलब उन्दा आ वाला लड़ना ही। कौन सा
9: क्या बात
0: उनके अंदाज़, सॉरी यार मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, तुम लोगों के सामने हैं, किधर गए हो समी, हसीब हसीब सॉरी, उनके अंदाजे करम। अच्छा इससे आगे क्या आपने बताया था, क्या स्टूडियो क्या मैक्स स्टूडियो, ओके मजा आ रहा है। अच्छा पता नहीं कड़ी गल कर रहे हैं ऐसी। प्ले करते हैं आज डॉक्स की फरमाइश के ऊपर उनके अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल का, ओ माय गॉड उनके अंदाजे करम, अंदाज भी और करम भी, उन पे वो आना दिल का,
10: म्यूजिक सर वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसका।
0: मुझे लगता है कि बाज़ोकात कुछ ऐसे औकात होते हैं जिसमें चीजें उतरती हैं, तो फिर आप क्रिएट करने की कोशिश नहीं पाए, मैं थोड़ा सीरियस करने लगा,
6: तो फिर मैं कह दूं।
0: हाँ कह दे कह दे, मैं भी यही सोच रहा था
6: आप थोड़े से बीजीएम के साथ।
0: यस बीजीएम नहीं, मैंने वही प्ले कर दिया।
6: हाँ उसी के,
0: हाँ हाँ यस चले
6: कि जो आप अक्सर कह रहे होते हैं।
0: हाँ सुना,
6: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, एक लाइन मेरी एक आपकी,
0: नहीं नहीं आपकी आपकी सिर्फ आप, आपकी इस आवाज में आवाज मिलाने की जुर्रत और वो मैं नहीं कर सकता।
6: मैं चाहता हूँ जरा साथ अच्छी उर्दू का तलफ्फुज भी जाता रहे साथ।
0: नहीं आप सुनाइए, आप सुनाइए
6: सुनाइए, मतलब है नहीं क्या कि आप अच्छी बोलते हैं,
0: आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं सच,
6: बहुत गलत बोला।
0: मुझे लोगों ने यहाँ पे कहा है कि आरजे डॉक्स का एक अलग अंदाज है पढ़ने का, नज्म गजल बहुत खूबसूरती से वो अदा करते हैं। पढ़ें।
6: नहीं सही बात है, अच्छा थोड़ी तारीफ कर देते हैं आप। अच्छा
0: मैं सच्ची तारीफ करता हूँ। सुनाए ना,
6: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें मबनी कोई तासुर कोई इशारा,
0: तो मैं तुम्हारा,
6: तो मैं तुम्हारा,
0: वाह वाह वाह।
6: गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह कहे नाम मेरे, बीजीएम भी दे रहा था बस। गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा
0: तो मैं तुम्हारा,
6: मैं तुम्हारा,
0: वाह वाह वाह।
6: तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी,
0: ओ हो हो हो।
6: अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा
0: तो मैं तुम्हारा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
6: तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना,
0: हाय हाय।
6: रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा,
0: जब तुम्हारा, ओ वाह वाह वाह वाह। तो मैं तुम्हारा,
6: यस तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ,
0: हाय हाय।
6: अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा
0: तो मैं तुम्हारा,
6: तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो,
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
6: ये किस पे
0: तावीज़ कर रहे
6: हो, तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे,
0: हाय हाय हाय,
6: ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तखारा,
0: तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तखारा, तो मैं तुम्हारा, ओह वाह वाह वाह,
6: तो मैं तुम्हारा,
0: वाह वाह वाह वाह,
3: क्या बात है, क्या बात है।
11: वो ज़माना,
0: ये दुनिया जब बनी होगी मैं अक्सर सोचता हूँ ये आदम ने हव्वा से क्या कहा होगा, यकीनन यही कहा होगा मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये जुमला सब जबानों में, ये जुमला सब जमानों में सभी से सुन चुका हूं मैं, मुझे तुमसे नहीं कहना, मुझे तुमसे मोहब्बत है।

0: करना नहीं था इश्क, रवानी में हो गया, खाना खराब है जवानी में हो गया। रहमान भाई, करना नहीं था इश्क, रवानी में हो गया, खाना खराब है जवानी में हो गया। दो चार दिन तो सब ने दिलासे दिए मुझे, फिर सबका ध्यान अपनी कहानी में हो गया। तन्हा तमाम उम्र निभा गया उसे, वादा जो एक शाम सुहानी में हो गया। उठाए उसके पास से खुद को ही छोड़कर, क्या हादसा ये नकल मकानी में हो गया। जो दर्द कहकों में छुपाया गया था, एकदम आया वो आंख के पानी से हो गया।
1: मन को भी यार बना लगाना दिल का।
2: जिस सफे तक शेल्फ में पढ़ के रखती थी जो किताब, उसके बिल्कुल अगले वर्क पे मेरा वाक्या लिखा था।

0: राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आज डॉक्स जो है वो तशरीफ लेके जा चुके हैं और हमारे जो दोस्त हैं, हमारे दिल कर रहा है कैसे ऐसे कहूँ कि जैसे हमारे जो यार हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अपकमिंग आर्जेंट्स भी। और हाँ हाँ बोलो, माइक ऑन कर लेते हैं।
1: कल आपने बात शुरू की थी ना, कल आपने जो शो शुरू किया था, हाँ मैंने ना पहले भी मतलब हमने एज अ कह लें कि हमें अटैच किया किया गया है बाकी आरजेज के साथ भी, कुछ फीमेल आरजेज हैं, कुछ मेल आरजेज हैं, नाम मैं नहीं लूंगा। जब उनको कहा गया कि आपके पास कुछ यंग इंटर्न्स हम भेजेंगे जो कि अपकमिंग आरजेज होंगे, तो उन्होंने वो वेलकमिंग पोस्चर नहीं दिखाया।
0: अच्छा, मतलब कि नेचुरल बात, जगह महसूस नहीं हुई
1: उनको, थोड़ा सा फील हुआ कि ये हमारे काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। वही बात है आपकी, वही बात है सर, जो पहले इतना कन्वेंशनल जिस तरह तरीका था कि लोगों को चांस नहीं मिलता था, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने क्या, जब हमें अगर हमें इंट्रोड्यूस भी कराया तो कैसे कराया कि ये कुछ इंटर्न्स आए हुए हैं, इनको कुछ हम सिखा भी रहे हैं, बस हमारे ये कुछ बात करेंगे, चलें जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, हाँ हाँ चलें ठीक है ओके। फिर अपनी आधे घंटे घंटा पूरे उन्होंने खुद बात की, चांस कोई नहीं मिलता था। लेकिन आपने कल बात किस तरह शुरू की कि ये अपकमिंग आरजीज हैं,
0: यस
1: दिस इज द थिंग दैट यू एक्सेप्टेड, और आपने खुल के ये बात का इजहार किया। ये हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कह सकता ये।
0: रहमान, बहुत खूबसूरत बात है। मसला ये है कि डर नहीं है कोई, खौफ नहीं है कोई, ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि यार
1: मैं आपको एक और बात
0: कहते मेनू तो नहीं कट जाएगा ये जगह, नहीं ले लेवे अगर यार वाकई वो इस काबिल।
1: क्या बात कर दिया, और एक और बात ना करूं,
0: जो मैं हमेशा ये कहता हूं अब्दुल रहमान, अगर अगर आपको ये मालूम हो चुका है कि जो सामने मेरे बैठा है यार वो मुझसे ज्यादा काबिल
1: है,
0: वो बात कर रहा है तो मुझे मजा आ रहा है, दिल खुश हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको ऑफर कर दो अपनी जगह।
2: बिल्कुल,
0: अल्लाह ताला ना नवाज देता है ऐसी सूरत हाल में कि मैंने इसको मैं ना दरअसल नाम नहीं लेता अक्सर, मैं सिर्फ एक मतलब तरीके से कोट करता हूँ इस बात को। वक्त के एक पैगंबर ने ये कहा कि क्या मुझसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई है अल्लाह ताला।
1: अच्छा,
0: क्योंकि पैगंबर इल्म कुल होता है,
2: बिल्कुल
0: उसके पास सारा इल्म उस वक्त का मौजूद होता है,

0: अल्लाह ने कहा हाँ एक है, वहां पे जाओ, मछली अगर पानी में, मतलब जो बना ली है मछली तुमने, वो अगर पानी में तैर ले, वो चली जाए, जिंदा हो जाए वापस, वो जगह होगी तुम दोनों के मिलने की, उससे वहां पे मुलाकात होगी। तो ये किस्सा कुरान में भी है
1: जी।
0: मैं इसको लफ्ज नाम लेकर नहीं कोट कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे मजहबी डिस्कशन नहीं करते। तो इल्म अगर किसी के पास ज्यादा है तो आपको उसकी करनी है। यहां तक कि मालूम नहीं हो रहा था वक्त के पैगंबर को कि यार ये जो काम कर रहे हैं, अचानक से कर रहे हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी की जो बनी बनाई नई कश्ती होती है उसमें छेद कर देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो मतलब इंसानियत के साथ जुल्म है,
2: जुल्म कर रहे हैं।
0: लेकिन वो ये कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता, ये मैं अल्लाह के हुक्म से कर रहा।
2: क्या बात कर रही
0: है? तुम्हें जिस बात का इल्म नहीं है तुम उसके बारे में राय कायम मत करो। बाज़ों का तुम्हें लग रहा होता है कि ये बुरी चीज है, गलत चीज कर रहा है, लेकिन वो कुछ और होता है, डिफरेंट।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आपकी आपसे ज्यादा इल्म है किसी के पास तो आपको देना। और यहाँ पे जो हमारे इतने प्यारे भाई अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर रेडियो को दे रहे हैं और अपने आप को निखारने के लिए आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है, तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए। बल्कि दोनों हाथ खोल कर नहीं, सीने से लगाकर आओ
1: ये तो आपकी
0: और आकर बैठकर बातें करो।
2: की है ना, मैं एक और बात करूंगा।
0: हाँ।
2: जिस बंदे में पोटेंशियल होता है,
0: हाँ।
2: या जो बंदा डिस्टिंक्टिव होता है, यानी कि जो निखरता है,
0: हाँ।
2: जो 100 बंदों के अंदर नजर आता है, उस बंदे को इनसिक्योरिटी नहीं होती,
0: कभी नहीं होती।
2: और मैं हल्का
0: कोई खौफ नहीं होता,
2: मतलब आपको मैं मुंह पे नहीं कह रहा, आपकी जो तरीकेकार है आपकी बात करने का, ये अल्लाह की तरफ से है।
0: By God, ये बात बिल्कुल सही है।
2: और
0: बिल्कुल सही है, ये अल्लाह
2: मैं कोशिश कर लूं, जितनी मर्जी की कोशिश कर लें, we can not match the level of yours।
0: ऐसा नहीं है,
2: मैं ये नहीं कहता,
0: मैं कभी ये नहीं रखता, हमेशा मैं ये कहता हूँ, यकीन करो अब्दुलरहमान आप में, अहमद बट आप में, अहमद बिलाल आप में, शहीर
2: हसीब,
0: हसीब रजा, उमर, सब में एक अलग क्वालिटी है,
1: यूनिक आइडेंटिटी है, सब
0: यूनिकनेस है, आप कुछ डिफरेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक मुकम्मल कायनात हो, दुनियाएं हो आप मेरे सामने,
2: हकीकत।
0: तो मैं कैसे कह सकता हूँ, कोई नक्स कैसे निकाल सकता हूँ?
2: नहीं निकाल,
0: हाँ, कहीं पे कोई नहीं, कभी नहीं निकालना चाहिए किसी में नक्स।
2: निकालता है वो असल में उसके अंदर
0: अपने अंदर की इनसिक्योरिटी होती
1: है, वो
2: अंदर उसका ईमान कच्चा
0: है। आप ये तो कह सकते हो यार तुमने अपने पक्ष बोला ना, ये गलत बोला है, ऐसे नहीं, जैसे तुमने यार ये मजहबी डिस्क नहीं, ये नहीं करना, ये लफ्ज नहीं, ऐसा तो हो सकता
2: है। वो
0: चीजें तसीह कुछ
2: ऑब्जेक्शनेबल चीजें होती है,
0: थोड़ी सी तरतीब में ऐसे ऐसे ऐसे करके यार ये, हाँ, इस्लाह। हीरे को भी जब कान से निकाला जाता है तो कोई कीमत नहीं होती, उसको जब तराशा जाता है, जोहरी तराशता है, तो फिर उसकी कीमत निकल कर सामने आती, चमक निकल कर सामने
2: आती। हकीकत है, बिल्कुल ऐसी ही बात। तो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस सर, आपका जो एक अंदाज है वो तो बहुत अच्छा हमें लगता है।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: जो सर असल बात थी वो मेरी यही थी कि जो बंदा
0: तुम्हें अच्छा लगा,
2: जी जी,
0: तुम्हें लगा कि हाँ अब वेलकम किया गया,
2: जी
0: बहुत खुशी
2: मुझे, अच्छा लगा।
0: इसका मतलब है मेरा यहाँ पे आना बेकार नहीं किया,
2: नहीं है,
0: आज नहीं आना था। खदीजा साहिबा ने कहा कि आज जरूर जाएं और जाकर बताएं, क्योंकि एक जो प्रोग्राम है ना वो मैं चाह रहा था, मेरे लिसनर्स ये कह रहे थे कि आपने अपने दोनों प्रोग्राम्स जो है ना वो इंटर्न्स के साथ कर लिए, आप ऐसा करें आरजेएस के साथ कर लिए, आपको चाहिए एक प्रोग्राम आप हमारे लिए सिर्फ करें। तो फिर मैंने उन्हें ये कहा कि कौन सा करना है मुझे बता तो दो, मैं जब भी जाता हूँ अचानक इंटर्न्स आके मौजूद होते हैं, मुझे तो बता दो कौन सा वाला
2: है, पहले पहुंचे होते हैं।
0: कहा कि आज आप जाएं रहमान और जाकर वहां पे ये बताएं कि ये आपको नहीं, आपको, आप तो आते रहते हो, आपको तो पता है कि ये जुमेरात वाला हमारा स्लॉट है, लेकिन नयान और वो कल कौन कौन से,
1: अली अहमद,
2: अली
0: और वो बाकी सारे
2: शेर,
0: क्योंकि वो तो उसके अंदर एफपीसी के अंदर उन्होंने इनपुट कर दिया ना कि नाम लिख दिया सब कुछ, लेकिन उसको हम सही करेंगे। जुमेरात वाला जो स्लॉट है ना उसमें हम तमाम आरजेस को, जो हमारे नए आरजेस आ रहे हैं, अपनी आवाजें, एक एक आवाज डिफरेंट है यार, खूबसूरत, अब्दुलरहमान गाता भी है साथ में, यहाँ पे अचानक बात करते हुए, मोहब्बत की बात करते हुए वही वाला ट्रैक गा भी देगा आपके लिए।
1: क्या
0: ये बात है, ये अहमद बट है, बात करते करते अपना एक्सपीरियंस मतलब शो कर देगा, इतना सेंसिटिव है अहमद बिलाल कि वो आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको महसूस करेगा कि आपने बात कहां से की,
1: बिल्कुल
0: वो उस चीज को अपनाएगा, समझेगा,
2: ऑब्जर्व किया।
0: बड़े क्यूट एंगल है तुम्हारे ये फेचर है। शहीर जो है बड़े अलग तरीके से कहेगा रहमान भाई से मैंने सीखा। और जो हमारा हसीब है गाएगा साथ में,
2: बिल्कुल एक और बात बताऊंगा,
0: हाँ।
2: मर्जी का मालिक है, जब दिल
0: एटीट्यूड
2: और बड़ा बात बताऊंगा
0: प्यार सा हो जाता है।
2: क्योंकि उसका नखरा बनता भी है जिसने अपनी आवाज पे टाइम दिया ना
0: तेरा मैं कर लूं फिर
3: तो यार रहमान भाई एक बात करना चाहूंगा
0: जी मैं जान करो
3: जैसे अब्दुलरहमान ने कहा कि हमें वेलकमिंग फील नहीं हुआ मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ 14th अगस्त का हमारा शो था यहाँ पे एंड
0: मैं आया सी मेरे ख्याल
3: ना नहीं आप तब नहीं थे हमारे साथ लाइन नहीं थे आप माइट बी हो तो हमें
0: आज बोल दा हाँ सही है
3: हमें आरजे असाइंड किए गए थे यहाँ पे एंड मेरे साथ एक यहाँ पे आरजे
0: इसको ना इस चेंज करते हैं हमें आरजेस के साथ असाइन किया आरजेस
3: के साथ
0: ये प्यारा लफ्ज है
3: हमें आरजेस के साथ
0: इतना लगता है कितना ताड़े वास्ते उन्होंने क्या किया वो
3: तो मैं पूरा प्रिपेयर होके आया कि हमारा 1 आवर है 14th अगस्त है इंडिपेंडेंस डे पे हम बात करेंगे मेरे साथ यहाँ पे एक मेल आरजे थे 101 की बहुत अच्छी आवाज है वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि
0: प्रोमिनेंट
3: हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ फीमेल आरजे शोज कर रही थी बेसिकली तो जब हम वहाँ पे हमने स्टार्ट की बात करना अचानक वो बात चले गई बच्चों को पालने पे मतलब ओना इंडिपेंडेंस डे शो अच्छा। ये बातें हो रही हैं बच्चों को पालने पे ये है वो है आधा घंटा हमने लाइक वी आर लिसनिंग क्योंकि हम तो डेफिनेटली उसमें इनपुट नहीं दे सकते एंड देन मैं तो खैर आई एम माइंड टर्न हेयर मैं बोल नहीं सका बट उन मेल आरजे ने उन्हें कहा भी कि ये इंडिपेंडेंस डे शो है मेरा ख्याल है कि हमारे साथ इंटर्न्स हैं तो हमें इसे बदलना चाहिए
0: सही है
3: बट उन्होंने उसी ट्रैक पे रखा एंड वी फेल्ट दैट कि मे बी ये हमारे साथ घुलना मिलना नहीं चाह रही या समथिंग लाइक कि वो अपने अंदर ही 2 से 3 आरजे आपस में रहना चाह रही
0: अच्छा ऐसा अगर आपको फील हुआ ना तो फिर ये थोड़ा सा तकलीफ दे है लेकिन क्या है कि कोई बात नहीं सीखने के अमल में ना कुछ चीजें आप ये समझ लो कि अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं ना तो 100% आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती
2: और हमें कुछ चीजें भी नहीं करनी चाहिए आपको मैं थोड़ा सा नहीं करना ताकि आपको मैं थोड़ी सी
3: नहीं मैं फेस करूंगा रहमान रहमान भाई के साथ मैंने शोज किए हैं दिया भाई के साथ
2: नहीं
3: असद भाई के साथ किए हैं
0: नहीं कोई बात
2: नहीं कहने का मकसद ये है कि
0: तुम्हारा भाई जवाब देगा
2: कि एक्सपेक्ट ना करो
0: हाँ
2: अगर प्यार मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा नहीं मिलेगा तो तुम कहोगे यार नहीं दिया तो ठीक है छोड़ो
1: एक्सपेक्टेड
2: इजेंसी अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना
4: लेकिन एक बात और तो है
2: आपको बुरा लगेगा
4: जैसे शहीर ने अभी बोला कि इतना वेलकम नहीं किया टॉपिक चेंज हो गया लेकिन मुझे लगता है कि अगर टॉपिक भी चेंज हुआ है ना तो शहीर ने कुछ ना कुछ सीखा है
0: हाँ।
4: उस आधे घंटे में जो टॉपिक चेंज हुआ है कुछ आपके नॉलेज
2: आपको कुछ आपका एक बेटर वर्जन सामने आया आज कुछ ना कुछ तो देखो
0: कोई गल नहीं ठीक है करती होने गल ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई
2: बात भी यही है आपके साथ जो हमारा ताल्लुक है दूसरी आरजीज के साथ तो नहीं
0: यार मुझे इतना इतना मैं आपको सच्ची बात बताऊं मुझे इतना प्यारा फील हुआ मुझे इतना अच्छा फील हुआ मुझे जरा सी भी नेगेटिविटी महसूस नहीं हुई मैं वैसा इंसान हूं कि अगर मैं बैठता हूं तो कुछ ही देर के अंदर ना वाइब्रेशंस मुझे ये बता देती हैं कि कौन सा इंसान मुझे दिल में बुला
2: जा रहा है। पॉजिटिव
0: वाइब्स आ रही हैं। या उसको नहीं दिल चाह रहा मेरे साथ बात करने का या उसको दिल नहीं चाह रहा
2: अवॉइड कर रहा है मुझे
0: अवॉइड कर रहा है या वो बात अभी शुरू भी नहीं हुई तो वो एहसास मिल जाता
2: फील हो जाता है एक वाइब
0: अगर आप इतने सेंसिटिव हैं अगर आप उनको मान लेते हैं दिल आपको बता रहा होता है कि यार ये ऐसे ऐसे है एक ख्याल अंदर ना आवाज कर रहा होता है कि यार ये नहीं वो नहीं करना चाह रहा तुम चुप कर जाओ ना बोलो एवं बिला वजह तो वो एहसास महसूस हो जाता है मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ इतना खूबसूरत लगा हर इंसान हर चेहरा इतना उजला हुआ इतना खूबसूरत और मैं कभी भी मैं मुंह के ऊपर अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कह देता हूँ कि यार मुझे ना क्या मसला है तुम्हें मैं सामने कह देता हूँ चाहे वो लाइव प्रोग्राम हो क्या प्रॉब्लम है हुआ ऐसा कई बार मैंने यहाँ पे डंके की चोट पे बैठा हुआ यहाँ पे बैठा हुआ था डिग्रेड करने की जो आपने बात की ना अभी सही
2: नहीं
0: सुन लो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ डिग्रेड मैंने कहा मैं करना वहां प्रोग्राम जहाजाद नीचे गली में तेरे दर के आगे शायरी में वो आया मैंने कहा आ जाओ फिर इधर से आ जाओ ये तो मेरा फेवरेट है तो वहां से आ जाते हैं तो मैंने करना है तो वो फिर लोग जब देखते हैं ना कि यार नहीं यार हम गलत कर रहे हैं तो वो खामोश हो जाते हैं फिर वो आज मेरे बड़े गहरे दोस्त भी हैं आज वो बड़े गहरे दोस्त भी हैं तो आपने सब हो जाता है लेकिन बाद में से यार गलती हुई। मैं इसलिए कहता हूँ, कल भी शायद मैंने ये कहा था कि चांस देना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: देना चाहिए चांस, बार बार बार बार कहना चाहिए कोई बात नहीं गलती हो गई तुमसे, माफ कर दिया कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। वो अगर ये कहे तू एक बारी नमाज नहीं ना पढ़ी हो नहीं मैं तेनों जान देना जन्नत दे विच, होन नहीं मैं तेनों करन देना, नहीं वो माफी मांग लो दोबारा पढ़ लो, वो माफ कर देता है, वो माफ करने वाला है।
5: Yes. बहुत खूब बात की है,
0: बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आखिर में जाते हुए एक एक लाइन बोलनी है सबने, अगर कोई बोलना चाहे कुछ भी बोलना चाहे आखिर में जाते हुए वो बोल सकता है, और फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। मैंने कहा था 2:48 हुए हैं अब, तो वो
1: टाइम का पता नहीं चलता ना।
0: बताओ
2: ये
0: हकीकत है, थैंक यू मेरी जान, शुक्रिया।
2: पता नहीं क्या चक्कर है,
3: भी मैं बात भी यही कर,
0: आखिरी लाइन एक बोल दे,
3: आखिरी लाइन तो मैं बोलता हूँ, पहले मैं वो
0: नहीं, जितना तुमने जितना बियर किया है और जिस आला जर्फी से, इस वक्त मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ, आला जर्फी से बियर किया है, बहुत सारी चीज़ों को तुमने सुना है, तुम्हें इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ अता करने वाला है। डरना नहीं, भागना नहीं, खौफ नहीं खाना, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, कहना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जब तुम ऐसे बोल रहे होगे, बता रहे
2: क्या बात,
0: कोई बात नहीं। ठीक है, एक तुम्हारी लाइन है यार नासिर।
2: सर मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा,
0: सुना
2: बाल का।
0: हाँ,
2: ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवंद,
0: वाह,
2: ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवंद,
0: वाह,
2: बुताने वहम गुमा ला इलाहा
0: इल्लल्लाह,
2: बहुत इसका वाजे मानी है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अहमद भट्ट, वैसे तो तुम्हारे टॉपिक की तरफ आने वाला था मैं, लेकिन फिर कर ले।
1: सर मैं टॉपिक से रिलेटेड एक लाइन बता देता हूँ।
0: अच्छा बताओ।
1: इंसान की जिंदगी में ना एक रिग्रेट होता है, हर चीज के बारे में ना इंसान सोचता है काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता तो ये चीज हो जाती, ये मैंने नहीं किया। तो मेरी नजर में ना जब आप सोचते हो ना कि आपको करना चाहिए तो कर गुजरो, बेशक उसका जो है ना आउटकम कुछ भी हो, लेकिन वो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर वो रिग्रेट रह जाएगी ना तो सारी जिंदगी आपको वो चीज याद आती रहेगी।
0: हो सकता था यार वो मैं कामयाब हो जाता उसमें,
1: जो है ना वो चीज छोड़ो मत।
0: अगर वो कामयाब नहीं भी होऊंगा तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, मैंने तो कर लिया ना अपने मन से, सब कुछ कर लिया अपना, 100% दे दिया तो ठीक है, बिल्कुल सही काम। एक लाइन अहमद बिलाल तुम्हारा।
4: मेरा मैसेज ही है,
0: हाँ,
4: वो ये है कि हमें खुश रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, किसी को हमारी ज़रूरत हो तो हमें उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए।
0: आई लव यू, मुझे बड़ा प्यार है तुमसे। शहीर क्या कहना चाहते हो, एक लाइन?
3: लाइन तो कुछ भी नहीं है, बट आपका थैंक यू करना चाहता
0: हूँ। सलामत रहो।
3: एंड मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि इट्स नॉट डैट कि उन्होंने हमें वेलकम नहीं किया, इट्स डैट कि आपने जिस तरह से किया वो अब हमें कम लग रहा है। सो वी लव यू,
0: खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। हसीब मेरे प्यारे, क्या तुमने गाना गाया आज, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन तुमने बनाया है।
4: आपके गिर्दो नवा में कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो लेकिन उसमें 2-3 चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, जिसने आगे बढ़ना होता है वो पॉजिटिव को देखता है हमेशा।
0: बिल्कुल
2: यार, वैसे ये बात दरिया का कुछ दिन बंद कर दिया,
0: बहुत खूबसूरत। अच्छा एक शेर है, उसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे, फर्स्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, गौर से सुनना है, आखिरी शेर है।
1: बिल्कुल सर।
0: मेरी जिंदगी बनाने वाला शेर है, मैं बहुत गुसीला इंसान था, बहुत ज्यादा गुसीला, यानी वो सोच की उस नहज पे नहीं पहुंच सकते आप, यूनिवर्सिटी में भी रहते हुए, किसी भी जगह पे रहते हुए, कि मैंने जहां जहां से मैं होते हुए गुजर के आया हूं, बहुत गुसीला। एक उस शेर ने मेरा सब कुछ तब्दील कर दिया। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते हैं।
2: क्या क्या कहने,
0: अपनी तरफ से तो पूरा कर लो ना, उसका
2: करो।
0: हाँ, उसका वो जवाब दे खुद। सजाद अली की खूबसूरत आवाज, काफी देर से इस ट्रैक के दरमियान में आपके हायल हुआ हूं। इजाजत चाहूंगा, आपसे मुलाकात होगी इस महीने के अंदर, मंगल की स्लॉट मैं करूंगा अगले महीने से इंशाल्लाह, या तो ज़ियान जुम या फिर आरजे डॉक्स मंगल की स्लॉट को लेकर चलेंगे, और हम अपने स्लॉट को दोबारा से कवर करेंगे बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक, प्रोग्राम अधूरी बात है। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना, अल्लाह हमें नासिर।

पता चल गया दिल की बात भी पता चल गई ना, तो चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। ओके पायल, थैंक यू। ओके पायल, ओके।

वैसे ये मुश्किल सवाल है या आसान सवाल है, आप बताइए, शायर हैं आप? हम तो समझते हैं कि शायरों की ईद हो जाती है अगर उनसे कोई हाल पूछ रहे तो तीन चार कलाम भी सुना देते हैं। चलिए वैसे मैं आपको

0: को दो चंद कर देता है। अच्छा आपको मैं सरकार इसी गजल का एक शेर है कि मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को ये ज़िंदगी का असूल बनाना चाहिए।
1: मैं यही तो चाह रहा हूँ, है ना? समझ ही नहीं रहे
0: हाय हाय, हम तो आपकी बात आप यकीन जानिए शायर साहब, आप बात नहीं भी करते तो हम आपकी बात तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत जो है आपसे।
1: मैं ये चाह रहा हूँ जो बड़ा बेबाक सा आदमी, और मैं तो ये चाह रहा हूँ ये आए, और मैं तो ये भी चाह रहा हूँ कि आप जो घूमते शौक में प्रोग्राम करते हैं, मैं तो कह कह के थक गया हूँ कि हमारी उर्दू किस तरफ जा रही है, गलतियाँ निकाले लोगों की तो ठीक करें उनको जो गलत पढ़ रहे हैं।
0: जनाब हमें रेडियो में एक बात सिखाई गई थी गुज़श्ता 15 बरस पहले कि हम जो सामईन है ना उनको कुछ सिखा नहीं सकते। हाँ कोशिश कर सकते हैं कि वो बेहतर हो जाए, और वो बहुत बेहतर है, लेकिन रेडियो आपका दोस्त है।
1: आपके आपके कुछ तो ऐसे हैं जो आवाज़ बदल बदल के भी आते हैं।
0: अच्छा कितना बड़ा फरेब है मेरी सादगी के साथ, है ना? चलिए कोई बात नहीं,
1: इनाम रखना था रख दिया।
0: चलिए
1: ये दूंगा भी मैं, नाम मेरा हमीद गुल है
0: जनाब। बिल्कुल आपके नाम से कौन वाकिफ नहीं है जनाब।
1: एक कथा है,
0: वो किसी ने कहा था ना कि कुछ मेरी वफादारी का इनाम दिया जाए, इल्जाम जो देना है तो इल्जाम दिया जाए। तो बहरहाल
1: शेर मुझे भी बड़े आते हैं।
0: इरशाद इरशाद,
1: बड़ा टाइम लग जाएगा।
0: इरशाद
1: जितने शेर सुनाएंगे मैं उसी मज़मून में आपको शेर सुनाता चला जाऊंगा।
0: इरशाद इरशाद,
1: ये हमारे उस्तादों की हमसे बड़ी खास निगाह रही।
0: इरशाद
1: सबसे बड़ी बात ये कि ये सबसे बड़ी बात अल्लाह का फजल है हम पे।
0: इरशाद
1: कम से कम फेसबुक से नहीं सीखा, किताबों से और उस्तादों के बाद।
0: जनाब हमीद गुल साहब आप प्रोग्राम की खूबसूरती हैं, आप अगर किसी ने कह भी दिया तो हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं।
1: पता है क्या कहता हूँ, वो जो मैं मेरे एक जुमला बड़ा बड़ा वायरल हुआ, मैंने किसी प्रोग्राम में ये कह दिया था, और ये मैंने ये कहा था कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जाहिल होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मेरा जुमला है कि वो कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, मैंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, जाहिल पढ़े लिखे होते हैं। मैंने
0: देखिए जनाब आप का नाम हमीद है, और हमीद का मतलब होता है पसंदीदा, आप हम सबके पसंदीदा हैं। जी हाँ, तो अब बहरहाल इस बात पे हम मजीद बात नहीं करेंगे, इसका जिक्र नहीं करेंगे, आप कलाम पेश कीजिए।
1: बात करते हैं गजल की जुबान।
0: जी गजल सुनाइए।
1: मैं आपको अपने कथा सुनाकर एक गजल सुनाऊंगा आपको।
0: सुनाइए
1: डॉक्टर शकील साहब की। मेरा एक कथा है, आपकी मदद कर रहा हूँ कि नया एक बाब लिखना चाहता हूँ। नया मिसरा उठाएंगे तो मुझे
0: हाय हाय, नया एक बाब लिखना चाहता हूँ। वाह वाह,
1: नया एक बाब लिखना चाहता हूँ, अनोखे ख्वाब लिखना चाहता हूँ।
0: वाह,
1: नया एक बाब लिखना चाहता हूँ, अनोखे ख्वाब लिखना चाहता हूँ, और शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि मैं तुझको सोचता रहता हूँ पल पल।
0: अच्छा,
1: मैं तुझको सोचता रहता हूँ पल पल, तुझे नायाब लिखना चाहता।
0: वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने,
1: तुझे नायाब लिखना। डॉक्टर शकील साहब की गजल है, इसके काफिये देखिएगा।
0: वाह वाह, और सरकार किसी शायर ने कहा था कि लिख के रख देता हूँ अल्फाज सभी कागज पर, लफ्ज खुद बोल के तासीर बना लेते हैं।
1: आपकी नजर शेयर कर देते हैं कि खास आपकी नजर है, लफ्जों से आने वाली खुशबू बता रही है। मैंने इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया दूसरे मिसरे में आदमी मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए, लफ्जों से आने वाली खुशबू बता रही है, वो आदमी है अच्छा उर्दू बता रही है।
0: वाह सुभान अल्लाह,
1: लफ्जों की तो बड़ी बात है, मेरी तो नज़्म है कि मैं जादूगर हूँ, मैंने तो बड़ा जिक्र किया, कभी सुनाएंगे आपको। बारह डॉक्टर शकील साहब की गजल की चंद शेर देखिएगा। मतलब देखिएगा कोई ख्वाहिश जब तक
0: अच्छा,
1: कोई ख्वाहिश जब तक पूरी होती है दिल के कोने में धक धक होती है।
0: अच्छा वाह।
1: कोई ख्वाहिश जब तक पूरी होती है दिल के कोने में धक धक होती है। और शेर आपके सामने रख रहा हूँ डॉक्टर शिकीर साहब का, कि इश्क सलामत लेकिन इतना ध्यान रहे। इश्क सलामत लेकिन इतना ध्यान रहे, इस धंधे में मौत अचानक होती है।
0: वाह।
1: इस धंधे में मौत अचानक होती है। मैं इस शेर को मैं जो अभी पढ़ने लगूं, मैं इस शेर को बड़ी देर तक मैं सोचता रहा कि खुददारी का ऐसा रोग लगा है मुझको। पहुंची अगर शेर तक कि खुददारी का ऐसा रोग लगा है मुझको, अपने घर जाऊं तो हतक होती है।
0: हाय हाय।
1: अपने घर जाऊं तो हतक होती है। और शेर फिर मुलायदा की जगह के धोखा नफरत कीना बोस अदावत झूठ। ये उन लोगों के लिए जो तनकीद करते हैं कि धोखा नफरत कीना बोस अदावत झूठ, हर चेहरे की अपनी कालक होती है।
0: हाय हाय।
1: हर चेहरे की अपनी कालक होती है। और सारा दिन कुछ सपने शोर मचाते, सारा दिन कुछ सपने शोर मचाते हैं।
0: अच्छा।
1: सारा दिन कुछ सपने शोर मचाते हैं, रात को नींद में भी ये बकबक होती है। आज के मजदूर का ये अलमिया के सारा दिन कुछ सपने शोर मचाते हैं, रात को नींद में भी ये बकबक होती है। और आपको शायद मैं किसी माजी के हिस्से में ले जाऊं शेर के साथ के आना, जिनको आना होता है वो आता है, सॉरी जिसको आना होता है वो आता है। जिसको आना होता है वो आता है। डर ना हो तो दीवार पे दस्तक होती है।
0: हाय हाय।
1: डर ना हो तो दीवार पे दस्तक होती है। और तूने आकर ऐन से इश्क सिखाया है।
0: अच्छा।
1: तूने आकर ऐन से इश्क सिखाया है, हमने पढ़ा था ऐन से ऐनक होती है।
0: वाह।
1: हमने पढ़ा था ऐन से ऐनक होती है। और बड़ा बारीक सा शेर है कि बूढ़ा बाप भी घर में रह सकता है अब।
0: हाय।
1: बूढ़ा बाप भी घर में रह सकता है अब, हर घर में छोटी सी बैठक होती है।
0: अल्लाह अकबर। इसको मुकरर कीजिएगा।
1: हर घर में छोटी सी बैठक होती है। इस
0: ये शेर मुकरर कीजिए।
1: इजाजत दें तो मैं दो तीन शेर आपको सुनाना।
0: इस शेर को आपने इस शेर को मुकरर कीजिए। हाँ,
1: कि बूढ़ा बाप भी घर में रह सकता है अब।
0: हाय हाय।
1: हर घर में छोटी सी बैठक होती है, ये लम्हे है।
0: हाय हाय।
1: हमारे उस्ताद का शेर है राना सईद जोशी साहब का शेर, लेकिन बाप की बात नहीं है। मैं बाप पे आवाज, क्योंकि मजमून है शायरी है, हम कहते हैं कि हम सीखें लोग, लेकिन ना सीखना चाहें कि राना सईद जोशी साहब का शेर बड़ा ट्रेवल किया है। कि वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से। वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, जहीर बाप को बेटे से बात करना थी।
0: वाह।
1: हाँ, इसी मजमून में गौर से मुलाहिज़ा कीजिएगा, यही मजमून है, बाप पे है। एक बार फिर यकीन गुमा बन के आया है। एक बार फिर यकीन गुमान बन के आया है, बाप बेटे के यहाँ मेहमान बन के आया है।
0: अल्लाह अकबर।
1: ये मेरा शेर था। एक और शेर सुने मेरा, ये कि मसले खुद बहुत खड़े हो जाते हैं घरों में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं।
0: अल्लाह अकबर।
1: इसी मजमून में एक और शेर सुनिएगा, हमारे उस्ताद मोहतरम अनवर सलीम साहब का शेर है कि सबाग है घर के असासे को बांटने। सबाग है घर के असासे को बांटने, यूं ही कहा था मैंने कि मरने लगा हूं मैं।
0: अल्लाह अकबर।
1: इसी मजमून में एक और भी शेर सुन लें। जो बंदी ने कहा था कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, खुद को कितना, कितने भी देखें और कितने को जरा महसूस करें कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। से समझौता करना पड़ता है। अब आते हैं शिक्षक,
0: अल्लाह अकबर, नहीं
1: बूढ़ा बाप नहीं,
0: इससे बात ना, अब बाप पर गुफ्तगू होगी, इसलिए इसी मौजू पे हम बात करेंगे। अगर आप
1: मैं मुकम्मल कर लूं, दो शेर हैं कि बूढ़ा बाप भी अब घर में रह सकता है, अब बूढ़ा बाप भी घर में रह सकता है, अब हर घर में छोटी सी बैठक होती है।
0: लेकिन हम समझते हैं हमीद भाई
1: जी जी,
0: कि क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं, किसी शायर ने कहा था ना कि उनके होने से बख्त होते हैं,
1: उनके होने से जी,
0: उनके होने से
1: बख्त
0: होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं।
1: मैं इत्तफाक करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो हम समझते हैं कि
1: इस बंदे ना चीज ने अपनी वालदा का जनाजा खुद पढ़ा मैंने,
0: हाय हाय, और वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह अकबर,
1: बात करना नहीं चाह रहा ना मैं कुछ किसी से कोई तगमा लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वसीयत थी, हम तो पुराने लोग थे, कुछ पुराने से मुराद यानी आधी सदी में देख चुका हूँ, आगे अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमें अपनी बच्चियों से पूछे, मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें तो एज अ लिखारी हम तो देख रहे हैं ना कि माशरे में क्या हो रहा है। अगर मुनव्वर आना कि आपने वहां पे देखे ना, वो पूरी PhD है, मैंने वहां पे कितने शेर कहे, कितने शेर कहे।
0: अच्छा, मुनव्वर आना कहीं, मुझे एक शेर याद आ गया कि वो कहते हैं कि ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। तो हम समझते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे,
1: जो मीठे फल हों उनका जायका अच्छा नहीं, जो कड़वे फल हों उनका जायका अच्छा नहीं होता, क्या शेर था वो, मीठे की तरह क्या बुजुर्गों की गालियों का क्या था वो, उसका जो जो अच्छे फल हों उसका जायका अच्छा नहीं होता, यानी बाप की कड़वाहट जो है वो आपके लिए तो कल मीठा साबित होगी, माता बहन का गुस्सा और ये वो सारा, ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मक्ता सुना के जाना चाहूंगा कि लोगों को ये बात समझाओ शकील, देखिए बात कहाँ खत्म हो रही है, लोगों को ये बात जरा समझाओ शकील, बेटी भी आंखों की ठंडक होती है।
0: हाय,
1: आपने माँ का जिक्र किया, हमने बाप का जिक्र किया, हमने बेटी का भी जिक्र किया।
0: जनाब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम
1: में, हम बेटी से बात करेंगे इंशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए,
1: समा फराजी की मैं माजरत बिल्कुल नहीं चाहूंगा,
0: सब आपसे मोहब्बत करते हैं हमीद साहब,
1: खुश रहें,
0: आप कॉल्स किया कीजिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया,
1: खुदा
0: हाफिज। जनाब ये प्रोग्राम आपका है और इसमें आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं, जब चाहें आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम 2 बजे प्रोग्राम शुरू करें और कोई कॉलर कॉल करे और हम 4 बजे तक तसलसल से आपके साथ बात करें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, किसी शख्स का नहीं है। तो दिल छोटा मत क्या कीजिए, इंसान मोहब्बतें बांटता रहे तो मोहब्बतें उसकी झोली तक भी आ जाती हैं। यही दर्स हमें माँ बाप देते हैं ना,

0: अलग एहसान है, आप बताइए। जी सुनाइए। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सर?
0: जी अल्लाह का एहसान है, आप बताइए।
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से।
0: जनाब
1: मुश्तबा भाई, उस दिन आपकी आवाज़ सुनी।
0: शुक्रिया।
1: तरन्नम के साथ, तरन्नम के साथ।
0: चलिए हम इस वक्त अपने प्रोग्राम में मौजूद हैं। उस वक्त जिशान भाई का प्रोग्राम था, खुर्रम भाई का प्रोग्राम था, 12 से 2 तक का प्रोग्राम था।
1: सितारे सभी हमारे अपने हैं।
0: अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा,
1: आप सभी हमारे लिए काबिले इज्जत और काबिले एहतराम है।
0: देखिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, जो गुंचा शौक का मिजाज है वो बहुत धीमा मिजाज है, बहुत अलग मिजाज है, तो आप इस तरह की कोई फरमाइश नहीं करने वाले। आप हुक्म कीजिए, बात कीजिए, कुछ सुनाइए कुछ।
1: मैं एक सबक सुनाना चाहता हूँ, नगेरा नूर की एक गजल है, अगर आप इजाजत दे तो।
0: गुफ्तगू चल रही है बाप पर, इतना मुकद्दस नाम है और हमारी दरख्वास्त भी थी कि गुफ्तगू होनी चाहिए बाप पर, नहीं?
1: इसमें तो कोई भी मतलब है, कोई डोप नहीं है कि कोई शक व शुबे वाली बात नहीं।
0: जी बताइए।
1: एक बहुत अजीम हस्ती है
0: जी,
1: और इनसे बढ़कर हमें कोई प्यार करने वाला, हमारा कोई ख्याल करने वाला मेरे ख्याल से कोई नहीं है दुनिया में। तो बेशक बिला शुबा हमें इनका एहतराम जितना हो सके। सुबह भाई मैं अपनी खुशामद खुद अपने मुंह तारीफ नहीं करता, वो एक अच्छा नहीं लगता। मैं यकीन माने कि अभी भी ना हतल इम्कान ये कोशिश करता हूँ कि अपने पेरेंट्स जो है ना उनके सामने बैठ नहीं सकता, उनसे कलाम नहीं कर सकता, मतलब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम होती है लेकिन ज्यादा देर में उनके साथ नहीं बैठ सकता। उसका रीजन ये है कि शायद मेरे से कोई गुस्ताखाना कलाम निकल जाए, मेरे से कोई बदबीयत भी हो जाए। तो मेरी अपनी ये ज़ाती राय है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि वालदैन के सामने जो हम एहतराम जिस तरह हमें करना चाहिए शायद हम नहीं कर पा रहे, और जिस तरह हक अदा करना चाहिए वालदैन का वो हमसे नहीं हो पा रहा। और अल्लाह पाक से हम दुआ मांगते हैं कि मालिक हमें वो एहतराम, वो तज़ीम और वो इज्जत, वो तकरीम वालदैन की जो बनती है हम उन्हें दे पाए, और मालिक हमें इस पर सुरखरू होने की हिम्मत और तौफीक दे। बाकी इसमें जितने भी लफ्ज हैं वो बहुत कम है। वालदैन एक बहुत अजीम रिश्ता है। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम जब खतूर पहाड़ से अल्लाह से हम कलाम होने जाते थे ना, सबा भाई,
0: अच्छा,
1: जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जब हम कलाम होने के लिए जाते थे ना तो अल्लाह डायरेक्ट उनसे बात करता था बिना मुशाबा। तो आपकी वालदा का साया आपके सर से जब उठा ना तो गैबे इलाही से आवाज है कि मूसा आज संभल के आना, या बारी ताला ये क्या माजरा है? पहले तो कभी मैंने ऐसा कोई वाक्य नहीं सुना आपके कि आपने मुझे फरमाया हो कि मूसा आज संभल के आना। तो गैबे इलाही से आवाज आई कि मूसा आज वो तुम्हारे लिए पीछे दुआ मांगने वाली तुम्हारी माँ नहीं रही। जब आप अल्लाह से हम कलाम होते थे ना आपकी वालदा आपके लिए दुआ मांगती थी, आपके लिए हाथ उठाती थी कि मेरे अल्लाह मेरे मूसा पे राजी हो, मेरे मूसा पे खुश रहना।
0: वो एक शेर है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है।
1: हकीकत मालिक, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं अक्सर ये जाने कि मैं ऐसे प्रोसीजर से गुजरा हूँ ना, अब भी का गुजर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालिदा मुहतरमा की मेरे पीछे दुआएं हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे दिमाग में जब ये एक शेर आता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, तो बिलाशुबा मुझे मेरी वालदा का जो चेहरा मुबारक है वो मेरे सामने आ जाता है। मैं अभी भी बहुत सारे प्रोसीजर से गुजर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोसीजर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरी कोई वालदैन की दुआओं का असर है कि मैं हर मंजिल से अल्लाह पाक की मेहरबानी से और रब्बे करीम का जितना भी शुक्र अदा करूँ, मैं अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर देता है।
0: जी, प्रोग्राम में शामिल हुए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर, सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: बहुत शुक्रिया। इंसान के वालिदैन ही उसकी असल ताकत भी होते हैं और उसका असल असासा भी होते हैं। हम जिन्हें बोझ समझते हैं, असल में वो बोझ नहीं होते, वो हमारी बुनियाद होते हैं, हमारी रूह होते हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूँगा, घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूँगा, गम छुपा कर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। तो जनाब, पता इंसान को चलता है, यकीनन चलता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। अपने माँ बाप की फ़िक्र करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, और माँ बाप की इज़्ज़त करने का, माँ बाप से मोहब्बत करने का, माँ बाप के एहतराम का एक तरीक़ा ये भी है कि इंसान से जो दूसरे लोग हैं ना, वो खुश रहें, ताकि उनको मालूम पड़े कि किसी बाप ने और किसी माँ ने इसकी तरबियत की है। इंसान को चाहिए कि वो मोहब्बतें आम करे, ताकि लोग उसके वालिदैन के लिए दुआ करें, और ये भी दुआ करें कि खुदा उस जैसे वालिदैन सबको दे, ताकि वो भी अपनी औलाद की बहुत अच्छे से तरबियत कर सकें। हम तो ये समझते हैं अच्छे हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद अच्छी है। यकीनन जब औलाद अच्छी है तो माँ बाप भी अच्छे हैं, और जिस इंसान को अपने माँ बाप की इज़्ज़त बढ़ानी है, वो दूसरों की इज़्ज़त करे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मावेनत हासिल है हमें ज़िशान भाई की, और वो हमें देख रहे हैं बिल्कुल शीशे के उस पार, और साथ ही साथ में उनकी दाद भी मिल रही है हमें। आपका बैन था, शुक्रिया जनाब। बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले कॉलर की तरफ, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है, चले गए। चले जी, फिर आ गए तो आने वालों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है बहन हमारे साथ, कहाँ से? इलम जी, बाप के हवाले से गुफ्तगु चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बाप के हवाले से कुछ सुनाना चाहेंगी क्या
2: जी?
0: बाप के हवाले से, वालिदे मोहतरम के हवाले से, वालिदे माजिद के हवाले से
2: जी।
0: जो इंसान
2: जो मोहम्मद बख्श कहते हैं कि बाप मरे सिर नंगा हुए,
0: हाय हाय,
2: बाप मरे सिर नंगा हुए, मामा बाज मोहम्मद बख्श कौन करे रखवाली,
0: हाय हाय हाय हाय।
2: सलामत है जिनके माँ बाप सलामत हैं, उन्हें अल्लाह मुबारक करे, और जिनके माँ बाप नहीं है अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए।
0: इरशाद,
2: वो कहते हैं कि फराज कहते हैं कि छोड़ दिए बंदगी मैंने ए फराज, छोड़ दिए बंदगी मैंने फराज,
0: کس نے کہا تھا کہ بندے نہیں ہیں جتنے، خدا ہیں خدائی میں، کس کس خدا کے سامنے سجدہ کرے کوئی، ہے نا؟ چلیے ارم، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں ہماری بہن، آپ کا بے انتہا شکریہ.
2: سلامت رہیں، خوش رہیں،
0: وعلیکم السلام.

0: क्या हाल है?
1: बिल्कुल ठीक।
0: अभी मैंने 3 बजे ट्यून किया था, अब्दुल नूर हाशमी बोल रहा हूँ रिवाज गार्डन लाहौर से।
1: जनाब
0: तो जब ये बेगू साहब की बात कर रहे थे ना समा कराची की, उस वक्त मैंने ट्यून किया, तो मैं पूछ सकता हूँ किस मौजू पे बात हो रही थी, या कोई वो अगलात की बात कर रहे थे गलतियों की?
1: जनाब आपने सुना होगा कि रेडियो आपने सुन रखा होगा कि रेडियो सिर्फ एक ही बार बोलता है। उसमें फलसफा क्या है कि जो बात हो गई सो हो गई,
0: हो गई
1: है ना,
0: मिट्टी पाओ।
1: आगे आगे जी जी मिट्टी पाओ, आगे बदना सीखो।
0: हमने भी मिट्टी डाल दी बातों पर भी और उनकी अफकार पर भी। तो
1: ऐसे
0: आज वाले साहब की बात हो रही थी।
1: जी हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। आज हमारे साथ जो जिनकी हमें मुआवनत हासिल है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे आरजे हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी इशाद
0: भाई, वाले साहब की बात हो रही थी।
1: जी हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। आज हमारे साथ जो जिनकी हमें मुआवनत हासिल है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे आरजे हैं,

0: रानी पे खत्म होता है, लेकिन ये रानी नहीं है, राजा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी इरशाद,
1: दोनों का कॉम्बिनेशन है।
0: इरशाद इरशाद इरशाद,
1: बाप के पर शेर है। तो मुझे रखा साए में और कुछ जलता रहा कड़ी धूप में, मैंने एक फरिश्ता देखा बाप के रूप में।
0: हाय हाय सुभान अल्लाह।
1: तो काफी सारी हैं, इतमार साजिद की भी शायरी है, वालद पे कासमी साहब की है, लेकिन आज मैं पढ़ रहा था अब्दुल सलाम अब्दुल को हमारे लाहौर के शहर से। तो
0: वैसे एक बात करना चाहूंगा मैं,
1: जरा फिर से कहना।
0: वैसे एक बात करना चाहूंगा हाशमी साहब, शायर का कोई शायर नहीं होता है ना, है ना, वो तो सबका होता है ना, मोहब्बतें बांटने वाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी इरशाद।
1: और मैं हमीरपुर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर तलफ की गलती हो तो हमें बताएं।
0: वो एक शायर हैं, वो कहते हैं कि हमारे स्कूल से ले जाएं अपने बेटे को, जो काम दो ये उसे गलत सलत करता है, इसे तो ठीक से उर्दू तलक नहीं आती, लफज लफज का तो तुल्फज ये गलत करता है। तो बहरहाल बात यूँ है कि तलफ़ हो या तुल्फज हो, बात सिर्फ बराह रास्त पहुँचाना मकसूद है। आप यकीन जानिए हमीद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, अदीब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोहब्बतें तकसीम करनी चाहिए, इंसानों को तकसीम नहीं करना चाहिए।
1: यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, तो हमें भी आ ही जाएगी।
0: जी आप बहुत अच्छा बोलने वाले हैं।
1: अच्छा
0: इरशाद,
1: उनकी गजल है हम जो साहब की। चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, रोज गर्ज से वो बरस जाओ किसी दिन, राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरी हाथ की खुल जाओ किसी दिन, पेड़ों की तरह हुसन की बारिश में नहा लूं, बादल की तरह झूम के घिर आओ किसी दिन, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पर बिखर जाओ किसी दिन, फिर हाथ को खैरात मिले बंदे कबा की, फिर लुत्फे शबे वसल को दोहराओ किसी दिन, दो शेर और, गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाए सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन। और आखिरी शेर है, मैं अपनी हर एक साल उसी रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरी जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। दुआओं में याद रखे मिश्रा भाई, और निशान भाई को भी सलाम मेरा।
2: वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम, आपको सुन रहे हैं।
1: फी
0: अमानिल्लाह। जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान साहब। जनाब
2: कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
0: एहसान खुदा का।
2: वालिद पे बात हो रही थी तो स्पेशल मैं फिर दूसरे रूम से उठ के आया हूँ, मैं कहा चलें थोड़ी सी गपशप लगाते हैं।
0: जनाब
2: के वालिद एक ऐसी हस्ती है कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि मेरे वालिद साहब ने आज तक मेरी हर ज़िद हर ख्वाहिश पूरी की है, और बेशक मतलब वो मेरी उनकी मिजाज के ख़िलाफ़ जा के थी, मतलब मैंने जिस पे ज़िद की, जिस पे उनकी तरफ से इनकार बनता था, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी की वो बात। तो काफ़ी सारी गलतियां ऐसी हैं जो मैंने की हैं, और वालिद साहब ने मेरी बहुत ज़्यादा उस पर मतलब मुझे उसको ना माफ़ भी किया है, और काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी गलतियों को ना अपने वालिद साहब के सामने जा के बैठ के रो के उनसे माफ़ी मांगूं, जो आज तक मैंने नहीं मांगी। और यकीन माने कि मैं मतलब मांग ही नहीं सकता उनके सामने बैठ के माफ़ी, ना मुझे बड़ा दिल चाहता है कि उनके सामने जा के बैठ के रोऊँ और कहूँ जी ये इस जगह पर मेरे से गलती हुई थी, आपने मुझे माफ़ किया, या आपने मेरे उफ़ भी नहीं आगे से की, तो बस अल्फाज रुक जाते हैं और मैं दिल ही दिल में घुट के मैं खामोश हो जाता हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि आज कदम उठाऊँगा, आज कदम उठाऊँगा। बहरहाल बात ये रही कि चंद रिश्ते होते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे
0: जी
2: कि

0: जो सही मायने में जो आपके साथ देने वाले रिश्ते होते हैं, ठीक है, तो उसके अलावा आपका कोई रिश्ता नहीं होता किसी भी मुश्किल हालात में या सही हालात में, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके वालिद साहब, जो आपके ऊपर आपका हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। बेशक वो आपके लिए पैसा लगाएं, कहीं आप फंस गए हैं या कहीं आपको ज़रूरत पड़ी है या कुछ, या आपकी तरफ से किसी के पास किसी की तरफ से आपकी गलती पर जाके माफ़ी मांगें कि भाई मेरे बेटे से ये बात होगी, ये गलती होगी, मतलब बाप हर तरह से झुक सकता है। सेकंड पे आते हैं आपका भाई, ठीक है, जो बेचारा हाथ पैर भी आपके लिए चला सकता है, मतलब कहीं झगड़ा हो गया कहीं ये वो आपका साथ देता है उधर से। तीसरे नंबर पे आती हैं वालदा, जो कि हाथ पैर तो कहीं बाहर जाके नहीं चला सकती, ना बाप की तरह पैसा लगा सकती क्योंकि वो कमाई तो नहीं करती, ठीक है, वो दुआएं करती हैं कि मेरे बेटे का ये मसला हल हो जाए, ये मसला हल हो जाए। चौथे नंबर पे आती हैं आपकी बहनें, जो बेचारी प्राय घर की होती हैं, वो दिल में घुट घुट के आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको उस मुश्किल में से निकलने के लिए आपके लिए दुआएं कर सकती हैं बेचारी। उसके अलावा आप कहें कि दुनिया का कोई रिश्ता, आपकी वाइफ या कोई कज़न, कोई दोस्त, वो आपका साथ देगा या आपका आपके साथ मुखलिस होगा या आपके साथ वफादारी करेगा, नहीं। अगर सिर्फ कोई चल सकता है तो सबसे टॉप पे है वो आपके वाले साहब। बहुत कुछ इंसान बाजू का ऐसा होता है कि वालिद साहब से कहना चाहता है लेकिन बस या डर के मारे या शर्म की वजह से वो नहीं कह सकता और दिल में घुट के रह जाता है। मेरा बहुत दिल चाहता है मैं वालिद साहब से करूं अपनी गलतियों का कि मुझे पता है यहाँ यहाँ आपने साथ दिया, यहाँ यहाँ आपने साथ दिया, लेकिन बस पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी ये शर्म उतारूँगा और रो रो के, जैसे लोग अल्लाह ताला के आगे रो रो के इल्तिजा करते हैं, अपनी माफ़ियाँ मांगते हैं ये वो, तो इसी तरह मेरा बड़ा दिल चाहता है कि वाले साहब के साथ भी जाके बैठ के उनसे अपने किले शिकवे भी किए जाएं और अपनी ना गलतियों की माफ़ी भी मांगी जाए। बहरहाल ये है कि वाले जो जिन जिन के वाले ज़िंदा हैं उनको चाहिए कि वो अपने वाले साहब का साथ दें, उनके आगे बैठ के अगर कोई गलतियां उनसे माफ़ी मांगें और उनका हर हुक्म मांगें माने। मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो मैं नहीं मानता हुक्म, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आगे से ऐसा हो।
1: हमारी आंखें भर आईं, आपने इतनी खूबसूरत बातें की। बाप दुनिया का एक ऐसा रिश्ता है जो अबदी रिश्ता है, नहीं, इसी तरह से माँ, बहनें, भाई। और यहाँ मतलब एक छोटी सी बात मैं और आपके आपकी वसातत से बराह रास्त अपने सुनने वालों तक पहुँचाता हूँ कि आपने वो देखिए, हम किसी रिश्ते की ना तर्दीद नहीं करेंगे, हाँ इन रिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो रिश्ते भी बहरहाल और बदस्तूर कायम हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप तो जानते हैं कि हम मोहब्बतें बाँटने वाले हैं, हम किसी तरह की भी मनफी गुफ्तगू से अगर हम इज्तनाब करेंगे तो उसका एक सवाब अलग से होगा। तो बहरहाल बाप से मोहब्बत कौन नहीं करता, माँ से मोहब्बत कौन नहीं करता, बहनों से, भाई से, और मैं समझता हूँ कि बाप और माँ ही वो हैं जो हमें मोहब्बत करना सिखाते हैं। कितने अच्छे वालिदैन हैं जो अपनी नफ़रतें आगे नहीं पहुँचाते, है ना, मोहब्बतें आगे पहुंचाते हैं, अपनी दुश्मनी अपनी औलाद तक मुंतकिल नहीं करते।
0: बाप की कदर उस वक्त आती है जब आप खुद बाप बनते हो, समझ आ जाती है कि अब जब आपका बच्चा आपसे कोई तोहफा या किसी चीज का, किसी भी चीज की, कहते हैं ये मैंने खानी है या ये गिफ्ट, या मतलब गिफ्ट सॉरी मुझे ये खिलौना चाहिए, और जब वो अल्फाज मुंह से निकाल देता है।
1: आपने खिलौने की बात की तो वो किसी शायर ने कहा था कि मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग अपने बच्चे के खिलौने को बचाने के लिए। तो इंसान है जो
0: ऐसी बात
1: अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत अरसा कबल अपने मरहूम वालिद मोहतरम की बरसी पर एक नज़्म कही थी, और उसके बाद जब भी नज़म कहने पर दिल आमादा होता है तो हाथ काम जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने सुनने वालों तक ये पैगाम पहुँचा दूँ कि नज़्म देखते हैं कहीं, अभी तो हमने तलाश की थी। बस क्या है कि ऐ मेरी पहली नमाज, ऐ मेरे क़िबला अब्बा, ऐ मेरी पहली नमाज, ऐ मेरे क़िबला अब्बा, आज तक फिर्द ज़बां है फ़क़त अब्बा अब्बा,
0: ज़बरदस्त।
1: आज तक फिर्द ज़बां है फ़क़त अब्बा अब्बा,
0: आगे
1: यकीनन हमारे सुनने वाले भी सुन रहे होंगे। ऐ मेरी पहली नमाज, ऐ मेरी पहली नमाज, ऐ मेरी पहली नमाज, ऐ मेरे क़िबला अब्बा, आज तक विर्द ज़बां है फ़क़त अब्बा अब्बा, अपनी औलाद की उल्फत में चमकते रहना, अपनी औलाद की उल्फत में चमकते रहना, आपका दिल था कि फिरदौस का शीशा अब्बा, कैसी मासूम अदा है कि फिदा हो जाऊं, कैसी मासूम अदा है कि फिदा हो जाऊं, नुत्क पाते ही पुकार उठता है बच्चा अब्बा, और अपने पहलू में मुसल्ले पे बिठाते मुझको, अपने पहलू में मुसल्ले पे बिठाते मुझको, गोया सिखलाते इबादत का सलीका अब्बा, सोच कर इल्म के रास्ते में न थक जाऊँ कहीं, सोच कर इल्म के रास्ते में न थक जाऊँ कहीं, अपने कांधों पे उठाते मेरा बस्ता अब्बा। और मुझको स्कूल की दहलीज तलक छोड़ाते, मुझको स्कूल की दहलीज तलक छोड़ आते, और फिर देखते रहते मेरा रास्ता अब्बा, और कुछ भी जग चूँकि पढ़ा जा रहा है, अपना कलाम तो ज़ाहिर है कि शायर को याद होता नहीं है, तो कहीं ऊंच नीच हो जाए, यहाँ से वहाँ हो जाए, तो अपने सामईन अपने सुनने वालों से माजरत। कुछ भी जब तंगी हालात में देखा ना गया, कुछ भी जब तंगी हालात में देखा न गया, मैंने देखा तो फ़क़त आपका चेहरा अब्बा, और मेरा ईमान है, मेरा ईमान है जो जितना मिला है मुझको आप और आपके ही नाम का सदक़ा अब्बा, और मुश्तबा मुश्तबा काश शरीयत में रियायत होती, मुश्तबा काश शरीयत में रियायत होती, काश कर सकता तेरी कब्र को सजदा अब्बा।
0: ज़बरदस्त ज़बरदस्त,
1: ममनून जनाब,
0: बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त जी।
1: साइन प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और गुफ्तगू चल निकली है वालदेन पर।
0: बस ये सोचा नहीं था कि मतलब आज इस टॉपिक पे इस तरीके से बात होगी, वरना बहुत कुछ सोच के आते, बहुत कुछ बोलते। और अभी भी ये है कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन अल्फाजों का चुनाव फिर उस हिसाब से ही होना चाहिए। अभी काश के आज जो हिम्मत मैंने यहाँ पे की है बताने की, बोलने की, वो मैं लाइव भी अबू के सामने बैठ के, वाले साहब के सामने बैठ के बोल सकता, या उनको कह रहा था कि यार आज शो होगा तो सुनना, कि हम मैंने आपको कुछ कहना है।
1: कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं।
0: नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं है। मेरा दिल है कि किसी और दिन सही अच्छा। ट्यून में आके ना, जो जिसे कहते हैं ऐसे रो के, कि यहाँ से बैठ के रो के मैं बोलूँ कि यार वाले साहब बहुत गलतियाँ हुई हैं, तो वाकई बहुत गलतियाँ हुई हैं।
1: अच्छा,
0: बहुत दिल दुखाया वालद का।
1: एक बात है जान भाई, रिहर्सल हो चुकी है, अब आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं,
0: मैंने असल में, मैं बताता हूँ आपको, मैं अक्सर ना वालदा को कहता हूँ, अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं कि देख तूने अब्बू का इतना दिल दुखाया हुआ, इतनी बातें वो तेरे लिए कर जाते हैं, इतना काम तेरे लिए कर जाते हैं, इतना तेज़ चल रहे, तूने एक दफ़ा भी कभी उनको शुक्रिया भी नहीं बोला, या कभी किसी बात पे सॉरी भी नहीं की कि यार ये मुझसे गलती हुई है। मैं कहता हूँ आपको मेरे दिल का क्या पता, मेरा बहुत दिल चाहता है, मैं दिल में रो रहा होता हूँ, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं पड़ती, मैं झिझकता हूँ। अम्मी कहती हैं कि भाई अब वालिद साहब को या मुझे तो नहीं पता ना कि तू शर्म के मारे उनके सामने नहीं बैठ रहा, ठीक है, या उनसे बात नहीं कर रहा। उनको तो यही है कि भाई ये हमारी किसी नेकी को या किसी अच्छाई को ये ना अप्रिशिएट करता है और ना ही अपनी किसी गलती पे ये सॉरी करता है। तो फिर मैं अम्मी को कहता हूँ कभी बैठूँगा अब्बू के सामने, और अक्सर ये होता है कि वालिद साहब घर आते हैं, मैं घर से निकलने लगता हूँ तो वालिद साहब का हाथ चूम के ना फिर निकलता हूँ, ये वो मेरा जिसमें वो मैं वाले सबको हाथ चूम रहा होता हूँ, उसी में मेरा बड़ा दिल उदास होता है कि मैं नहीं कह पा रहा वो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहरहाल कभी इस टॉपिक पे लंबी और अच्छी गुफ्तगू करेंगे, और कभी मैं उनको बता के आऊँगा कि आज सुनिएगा कि मैं जो आपके सामने बैठ के नहीं कह सकता वो चलें।
1: लेकिन हम समझते हैं कि जो वालिदैन है ना, वो आप यकीन जानिए वो चाहते भी नहीं हैं कि हमारी औलाद हमारे सामने इकरार करे किसी बात का, वो दिल से माफ़ करने वाले हैं। आप यकीन जानिए कि बहुत पहले से आपके वालिद महतरम आपको माफ़ कर चुके हैं। शामिल करते हैं प्रोग्राम के आखिरी कॉलर को।
0: अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कौन? अल्लाह का शुक्र जनाब, कौन भाई बात करें, कहाँ से?
2: सर शफीक बोल रहा हूँ जी, कोटा से।
0: जी शफीक भाई कैसे हैं?
2: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जहन भाई, मैं आपकी गुफ्तगू सुना था तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वालदा साहब को बचपन में जो आपकी बात है कि मैं जिद किया करता था, वालदा साहब तो बचपन में ही दो साल दूसरी क्लास में पढ़ता था, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो माँ जो है उसने हर एक ख्वाहिश पूरी की, जो उनको बोला, जो उनको जिस चीज की हमने ख्वाहिश की उन्होंने पूरी की है। अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ, तकरीबन 55-56 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन उनके सामने आप वाली बात की आज भी बैठने से जो है ना, बैठता जरूर हूँ, बातचीत करता हूँ, और बड़ी दफा रो के माफी मांगी है उनसे, उनके पाँव पकड़े हैं कि अम्मी जी मैंने आपको बहुत तंग किया है, बहुत दफा आपको इतना सताया है कि शायद की कभी मुफ्ताक उन्होंने की हमें नहीं करनी चाहिए, उन्होंने नहीं की है,
0: ऐसी बात।
2: लेकिन मैं आपकी गुफ्तगू सुनी है तो मैंने बोला चलो आज मैं भी अपनी बात शेयर करता हूँ, और आपको आप हिम्मत करें, आप ये जो आपके दिल में ख्याल आ रहा है ना कि मैं उनसे माफी मांगू, यकीन करें जो आपके दिल को उस वक्त सुकून मिलेगा ना उसके सामने बैठ के जो बात करने से माफी मांगने से, मैं कहता हूँ कि कायनात का सारा जो है ना साशे एक तरफ, वो अपने वालिदैन से माफी मांगी हुई जो है ना उसका सुकून एक तरफ होगा।
0: ऐसी बात है, ऐसी बात है। मैं आपको बताऊं, मैं वालदा से फिर कर लेता हूं कि अच्छा माँ जी सॉरी ये गलती हो गई है, अच्छा अब ये नहीं होगा, लेकिन यकीन माने आज तक इतना उम्र गुजर गई है, मैं वालद साहब से नहीं मांग सका ना माफ़ी और ना ही किसी बात पे उनका शुक्रिया अदा कर सका हूँ, पता नहीं क्यों, और दिल में एक ऐसा गुबार सा है ना, और जिस दिन मैं करता गया उस दिन मैं फूट फूट के रहूंगा। मुझे पता है उन्होंने उसी टाइम चुप करा देना, उन्होंने कहना बस बच्चे ठीक है हो गया, आइंदा से ऐसा ना करना, या चलो हमारा फर्ज था, या चलो तुम छोटे हो गलती थी ठीक है, लेकिन बस वो माफी जो है ना बस वो कदम नहीं उठाया जा रहा, इंशाल्लाह ताला करूंगा इंशाल्लाह।
2: ये हिम्मत करें आप, मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपको ऐसा सुकून असर आएगा, आपके दिल के अंदर ऐसी खुशी महसूस करेंगे कि आप बोलेंगे यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया।
0: बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही इंशाल्लाह, लाजमी जी लाजमी
1: जनाब, बहुत शुक्रिया।
2: सभी सुनने वाले जिनके वालदैन आजाद हैं, खुदा रहा उनकी इतनी इतनी खिदमत करो कि उनका दिल इतना आपके खुश हो जाए ना कि आप मुंह से कोई ख्वाहिश करें دنیا کی تو اللہ تعالیٰ کو پورا کرے.
0: بالکل آمین آمین.
2: بہت شکریہ,
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.
1: جناب آپ نے نا جس دن ان سے معافی مانگنے کے لیے ہمت باندھی, انہیں تنوں نے ایک کھچ کے چپیڑ لانی, انہیں کہنا کہ اور میں تنوں معاف کیتا بہت پہلے تو ایویں تو روئی جا رہے.
0: اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے
1: مجھے پنجابی آتی ہے
0: تھوڑی بہت. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بگڑنے میں میں نے آج تک جو حاصل کیا اور آج تک جو نہ حاصل کیا اس سب میں میرے والد صاحب کو بہت ہاتھ ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے مجھ پہ روب ڈالا ہی نہیں, مجھے مارا پیٹا ہی نہیں, مجھ پہ غصہ کیا ہی نہیں, چپ ہو جاتے ہیں وہ. اور والدہ ہمیشہ اکثر کہتی ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ انہوں نے ایک صدمہ, جیسے نہیں بندہ آہ لیتا یا صدمہ لیتا خاموش ہو جاتا, یہ وہ کرتے ہیں ہمیشہ. تمہارے والد جو ہے نا یہ وہ کام کرتے ہیں کہ وہ اس میں ہی ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو یہ آگے سے کچھ نہیں کر رہا, تو مجھے مارتے پیٹتے نہیں ہیں بس خاموش ہو جاتے ہیں, تو مجھے ان کی خاموشی بھی مجھے چپتی ہے. تو بس اس لیے میں سوچ ہوں کہ کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ لائف نہ بھی بول سکا پہلے اس طرح بولوں گا کہ سننا آج, پھر جا کے وہ خود ہی مجھے, میں کسی کمرے میں بیٹھا ہوا مجھے ڈھونڈ کے کہیں گے آ جا بیٹا آ جا.
1: دیکھیں جناب
0: بس کرو لائے گا کیا,
1: کچھ کہہ بھی نہیں سکتے وہ, اس لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنا جسم ہوتا ہے, اپنا خون ہوتا ہے, بلکہ بات جو ہے نا وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. کسی پڑھنے والے نے کہا تھا کہ امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دین پر اور اسلام پر مکمل طور پر قربان ہوئے, اور پھر اس نے کہا کہ جو بیٹا ہے وہ خون ہوتا ہے, اور شیر کہا کہ شبیر تیرے جسم میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. سائن محترم ماں باپ کی بات ہو رہی ہے اور ایسے میں کیوں نہ اس کی بات کی جائے جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. زندگی چاہے 100 سال کی ہو اختتام موت ہے, ہم نے اپنے خدا کے حضور پیش ہونا ہے. وہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے, نعمت دی ہے, کیا کیا تم نے, کیا تم نے میرے بندوں کے ساتھ اچھائی کی, کیا تم نے وہ کام کیا جس کے لیے بھیجا تھا. تو یقیناً انسان کے لیے اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے خدا کی قسم الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے. جس کیفیت سے میں گزر رہا ہوں اور جو آپ پہ تاری ہے یقیناً آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو,
0: ایسی بات,
1: میری بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو اس کیفیت سے بچنے کے لیے, اس شرمندگی سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے
0: دنیا کی رونقوں میں,
1: جی ہاں
0: ہم نے اپنی آخرت کی تیاری ابھی تک نہیں کی ہوئی.
1: انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ محبت کرے, اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا, اور جب اسے جانا ہے تو کن کن باتوں کا جواب دینا ہے. بڑے شوق سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خدا اپنے حقوق معاف کر دے گا اور بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا, تو بھائی
0: وہاں پہ بہت پکڑ ہوگی کوکلہ تو معاف
1: تو ہو بھائی سکتے وہ ہیں. معاف وہ یہ بات ہماری سوچ سے نا ہمارے ادراک سے بہت آگے کی بات ہے کہ وہ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے مگر حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ معاف کر دے گا؟ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ
0: حقوق اللہ تو معاف, ہمیں پتہ ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے وہ کر ہی دے گا, لیکن حقوق العباد میں آ کے ہم پھنس جائیں گے. پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جن جن سے ہم نے زیادتیاں کی, جن جن کا ہم نے دل دکھایا, جن لوگوں کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ٹھیس پہنچا جانے میں انجانے میں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
1: اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ اگر کسی کی نیند جو ہے نا وہ हमने गारत की है तो उसकी माफ़ी। बहरहाल आप हमारे साथ शामिल हुए प्रोग्राम में, आपका बेइंतहा शुक्रिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलें भाई मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, सबसे पहले आप सामिन से रुख्सत हासिल कीजिए।
0: जी जनाब, बस ये थी आज का हमारा शो, थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आया, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह
1: साइन जिशान भाई हमारे साथ शामिल रहे, आप हमारे साथ शामिल रहे और ज़िंदगी ने वफा की, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।

إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم